नेत्रभिदे नमः ओम उग्राय नमः ओम पशुपतये नमः ओम तार्क्ष्याय नमः ओम प्रियभक्ताय नमः ओम परंतपाय नमः ओम दात्रे नमः ओम दयाकराय नमः ओम दक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम कामशासनाय नमः ओम श्मशाननिलयाय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम श्मशानस्थ

नमः। ॐ महर्षि कपिलाचार्याय नमः। ॐ विश्वदीप्तये नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ पिनाकपाणये नमः। ॐ भूदेवाय नमः। ॐ स्वस्तिदाय नमः। ॐ स्वस्तिकृते

नमः। ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। ओम भस्मप्रियाय नमः। ओम कामिने नमः। ओम कांताय नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम समावर्ताय नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम धर्मपुंजाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम अकल्मषाय नमः। ओम पुण्यात्मने नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम दुरासदाय नमः। ओम दुर्लभाय नमः। ओम दुर्गमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वायुधविशारदाय नमः। ओम अध्यात्मयोगनिलयाय नमः। ओम सुतंतवे नमः। ओम तंतुवर्धनाय नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लोकसारंगाय नमः। ओम जगदीशाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम भस्मशुद्धिकराय नमः। ओम अमेरवे नमः।

ॐ बाणहस्ताय प्रतापवते नमः। ॐ कमण्डलुधराय नमः। ॐ धन्विने नमः। ॐ अवाङ्मनसगोचराय नमः। ॐ अतीन्द्रियाय महामायाय नमः। ॐ सर्वावासाय नमः। ॐ चतुष्पथाय नमः।

वीर्याय नमः, ओम भूतचारिणे नमः, ओम पुरंदराय नमः, ओम निशाचराय नमः, ओम प्रेतचारिणे नमः, ओम महाशक्तये महाद्युतये नमः, ओम अनिर्देश्य वपुषे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम सर्वाचार्याय मनोगतये नमः, ओम बहुश्रुताय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम नियतात्मने ध्रुवाय नमः,

ॐ सर्वशासकाय नमः। ॐ नित्यप्रियाय नित्यनृत्याय नमः। ॐ प्रकाशात्मने प्रकाशकाय नमः। ॐ

नमः, ॐ मध्यस्थाय नमः, ॐ हिरण्याय नमः, ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः, ॐ परमार्थाय नमः, ॐ परमायाय नमः, ॐ शंभराय नमः, ॐ व्याघ्रलोचनाय नमः, ॐ रुचये नमः, ॐ बहुरुचये नमः, ॐ वैद्याय नमः, ॐ वाचस्पतये नमः।

ॐ नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ रविलोचनाय नमः ॐ विश्वोत्तमाय नमः ॐ वीतभयाय नमः ॐ विश्व

नमः, ॐ विश्वसहाय नमः, ॐ ध्येयाय नमः, ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः, ॐ उत्तारणाय नमः, ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः, ॐ विज्ञेयाय नमः, ॐ दुःसहाय नमः, ॐ धावाय नमः, ॐ अनादये नमः, ॐ भूर्भुवो लक्ष्म्यै नमः, ॐ किरीटिने नमः, ॐ त्रिदशाधिप

ब्राह्मणाय नमः ॐ ऋषये नमः ॐ ब्राह्मणाय नमः ॐ ऐश्वर्याय नमः ॐ जन्ममृत्युजरादिकाय नमः ॐ पञ्चयज्ञसमुत्पत्तये नमः ॐ विश्वेशाय नमः ॐ विमलोदयाय नमः ॐ अनाद्यन्ताय नमः ॐ आत्मयोनये नमः ॐ वत्सलाय नमः ॐ भूतलोकदृशे नमः ॐ गायत्रीवल्लभाय नमः ॐ प्रांशवे नमः ॐ विश्वावासाय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ शिशवे नमः ॐ गिरिरथाय नमः ॐ सम्राजे नमः ॐ सुषेणाय सुरशत्रुघ्ने नमः ॐ अनेमये नमः ॐ इष्टनेमये नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ विगतज्वराय नमः ॐ स्वयं ज्योतिषे नमः ॐ महाज्योतिषे नमः ॐ तनुज्योतिषे नमः ॐ अचञ्चलाय नमः ॐ पिङ्गलाय नमः ॐ कपिलश्मश्रवे नमः ॐ भालनेत्राय नमः ॐ त्रयीतणवे नमः ॐ ज्ञानस्कन्दाय नमः ॐ महानीतये नमः ॐ विश्वोत्पत्तये नमः ॐमुपप्लवाय नमः ॐ भगाय नमः ॐ विवस्वते नमः ॐमादित्याय नमः ॐ गतपाराय नमः ॐ बृहस्पतये नमः ॐ कल्याणगुणनाम्ने नमः ॐ पापघ्ने नमः ॐ पुण्यदर्शनाय नमः ॐ उदारकीर्तये नमः ॐ उद्योगिने नमः ॐ सद्योगिने नमः ॐ सदसत्रपाय नमः ॐ नक्षत्रमालिने नमः ॐ नाकेशाय नमः ॐ स्वाधिष्ठानषडाश्रयाय नमः ॐ पवित्राय पापनाशाय नमः ॐ मणिपूराय नमः ॐ नभोगतये नमः ॐ हृत्पुण्डरीकमासीनाय नमः ॐ शक्राय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ उष्णाय नमः ॐ गृहपतये नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ समर्थाय नमः ॐ अनर्थनाशनाय नमः ॐ अधर्मशत्रवे नमः ॐ अज्ञेयाय नमः ॐ पुरुहूताय पुरुश्रुताय नमः ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ॐ बृहद्गर्भाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: सुरभिर्वतो
1: भरद्वाजस्य प्रश्नेयम्
0: ब्रूहाद्भिरग्ने अतिभिर्हवो शुक्र

विद्या की अधिष्ठात्री देवी, ब्रह्म विद्या स्वरूपा सरस्वती। क्योंकि मनुष्य का प्रयोजन है ब्रह्म विद्या, और जिस विद्या को तुम चाहते हो उस विद्या के अधिष्ठाता जो देव हैं उनकी प्रसन्नता न हो तो वो विद्या फलीभूत नहीं होती है। संसार में हर चीज के एक एक वस्तु के एक एक अधिष्ठाता हैं, और उन अधिष्ठाता का अनुग्रह हुए बिना वो वस्तु हमारे उपयोगी नहीं हो पाता है। तो अपने उपयोगी होने के लिए अधिष्ठाता की कृपा बहुत जरूरी है, इसलिए ब्रह्म विद्या फलीभूत होने के लिए ब्रह्म विद्या अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती, उनकी कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि भगवती सरस्वती ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए वह मेरे लिए मंगलकारक हो। मंगलम दिशतु मे महेश्वरी। हाँ, महेश्वरी ये पूरी शक्ति का वाचक है, क्योंकि शंकराचार्य जी शिव और शक्ति दोनों के संयुक्त रूप में मानते हैं। और हमने कल सौंदर्य लहरी के बारे में चर्चा की थी, तो शंकराचार्य जी ने शक्ति की उपासना के क्रम में सौंदर्य लहरी की रचना करते समय पहले श्लोक में कहा, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुम अपि। तो शिव में जो इकार है वही शक्ति है, और इकार रहित तो जो शिव है वो केवल सब हो जाता है, और सब में यदि इकार का ई मात्रा का प्रवेश होता है तो फिर परमात्मा हो जाता है। ई यदि हट गया तो सब, और ई जुड़ गया तो शिव। तो सबको शिव बनाने वाला कौन है? शक्ति। इकार यही शक्ति का प्रतीक है। तो समस्त जगत को, जड़ात्मक जगत को भी चेतनात्मक बना के दिखाना, और दोषात्मक जगत में गुणात्मक बनाकर दिखाना, दुखात्मक जगत में सुखात्मक बनाना, असुचि अपवित्रता में पवित्र और सुचिता आदि बना देने की क्षमता उसी शक्ति में है। इसीलिए उसके अनुग्रह भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मंगलम दिशतु में महेश्वरी, क्योंकि महेश्वरी और महेश यानी महादेव शिव की शक्ति है। मंगलम दिशतु में सदा शिव। अंत में भगवान शिव जो ब्रह्म विद्या के रूप हैं, यानी ब्रह्म रूप हैं, परमात्मा हैं, वह मंगल हमारे लिए मंगल कारक हों। सदाशिव माने हमेशा कल्याण करना जिनका स्वभाव है। पुष्पदंताचार्य जी ने इस सदाशिव का इस तरह व्याख्या की है, भुवन भंग व्यसनिना, भुवन भय भंग व्यसनिना, भगवान शिव के लिए कहा, भुवन भय भंग व्यसनिना। भगवान शिव का व्यसन क्या है, आदत क्या है? व्यसन माने आदत। तो उनकी आदत क्या है? तो बोले भुवन भय, उसको भंग करना ही उनकी आदत है। उस प्रसंग का स्मरण करते हुए पुष्पदंताचार्य जी ने वाक्य कही, जब समुद्र मंथन हुआ, अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवासुर कृपा विधेयस्या सिद्ध्य स्त्रीनयन विषम सम हृतवता। बिना समय में ही समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के बाद जो निकला हुआ कालकूट था, जहर था, उस जहर से बिना समय ही सारा पृथ्वी यानी ब्रह्मांड को नष्ट करना लग गया वो जहर।
अकांड ब्रह्मांड क्षय, बिना समय में प्रलय होने का कोई समय आया नहीं, फिर भी ये प्रलय कर रहा है, कौन कर रहा है? तो विष कालकूट, उसको देखकर सब भगवान शिव के प्रार्थना करने लग गए। छह चकित भयभीत देवासुर, देवता असुर मनुष्य सब भयभीत हुए और भयभीत होकर भगवान शिव की प्रार्थना में लग गए और उनकी प्रार्थना को देखकर उनके भय का जो कारण था उसको भंग कर दिया। विधेयस्या सिद्ध्यस् त्रिनयन विषम समृतवत, वह त्रिनयन भगवान शिव ने उन सारे विष का संहार कर लिया। देखो तीन नेत्र वाले ही विष का संहार कर सकते हैं, अन्यथा एक नेत्र वाले दो नेत्र वाले विष का संहार नहीं कर सकते, विषय ही विष है। आप लोगों को कई बार वेदांत के प्रसंग में हमने बताया है, संसार के पदार्थों को वेदांत के शब्दों में एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन पदार्थों के लिए वह शब्द है विषय। आप लोगों ने गले में माला डाल दी है ना, यहां के बैठते ही अपने माला डाल दी, वेदांत इसको क्या बोलता है पता है? विषय। वेदांत इसका नाम क्या है? वेदांत की दृष्टि में विषय, संसार के पदार्थों का नाम विषय, यह भी तो एक पदार्थ है तो विषय, ये प्रिय है इसीलिए प्रिय विषय है, संसार में इसको भी विषय बोलते हैं, इसको भी विषय बोलते हैं, जो भी नाम रूप है उसको क्या कहते हैं? विषय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय हैं, और इस माला में वही तो पांच हैं, है कि नहीं बोलिए? इसमें गंध भी है, इसमें रूप भी है, इसमें रस भी है, इसमें स्पर्श भी है, तो ये विषय है। और इसीलिए वेदांत ने इसको विषय कहा, क्योंकि इसमें विष भरा हुआ है। और हमारे दृष्टि से तो आपको कहें आपने गले में विष डाल दी है, बस समझ गए ना, क्या डाल दिया? विष डाल दिया, क्योंकि विष तो है ही है और यह कार और जुड़ गया तो क्या हुआ? विषय। आप लिख लो, कागज है तो विष लिख लो और विषय लिख लो, तो विषय लिखने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले विष लिखकर फिर यह जोड़ दो पीछे तो क्या हुआ? विषय हुआ। तो यह जोड़ते ही विष हट गया, विष तो है ही है, यह और जुड़ गया है, इसलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम। शिष्यों को समझाते हैं, हे शिष्यों तुम लोगों की दृष्टि में विष और विषय में क्या अंतर है? बोले महाराज विष तो बहुत खतरनाक है, विषय तो ऐसा लगता नहीं है, इसलिए विषय तो बहुत अच्छा है, विष तो बड़ा खतरनाक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम गलत करते हो, विषय तो और भी खतरनाक है, विष तो फिर भी ठीक है, विष और विषय में बड़ा अंतर है, विषय तो और भी खतरनाक है। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज वो कैसे? ये माला आपने गले में ढाल दी तो उसे क्या नुकसान हुआ हमारा? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, और विष तो यदि मिल जाता तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती। शंकराचार्य जी कहते हैं उपभुंक्त्वा विषम हन्ति विषया चक्षुषाप्ययम्। विष तो सेवन करने के बाद जिह्वा में लगाने पर ही उसका असर होता है, विष देखने से असर नहीं करता है, करता है विष ये नाम सुनने से असर करता है, ये विष है करके आंखों से देखने से असर करता है, नहीं करता है?
छूने से भी असर नहीं करता है, सुनने से भी असर नहीं करता है, हाँ सूंघने से भी असर नहीं करता है, वो तो जिह्वा में लगाओ, भोगने से ही विष असर करता है। लेकिन विषय इतना खतरनाक है कि आंख से देख लिया कि असर कर लेता है, करता है कि नहीं बोलो। एक यहां अभी कथा समाप्त हो जाए, ऐसा न हो किसी के हीरा का टॉप गिर जाए, हैं? तो उसको जुआ में रखोगे तो मरेगा कि नहीं? कोई नहीं मरेगा, और 20 जुआ के रखते ही मर जाएगा, है ना? हम लोग तो यही मानते हैं ना कि 20 में और ये विषय में कितना अंतर है। लेकिन मन उसको देखे कि ये हीरे का है, करते तुम्हारे पांव वहीं खड़ी हो जाए, रुक जाएंगे, चाहे कितनी हतार हो तुम वहां रुक जाओगे, इधर उधर देखोगे, सब चले जाएं तब हम उठाएं। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत मिलते हैं, दिख जाए तो फर्श से पहले तो पांव से उसको दबाएंगे और वहीं खड़े हो जाएंगे, और पीछे वाले कहेंगे चलो चलो आगे बढ़ो, बोले नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ा काम है तुम जाओ, तो सब चले जाएंगे, तब फिर वो उठा के जेब में डालेगा। विषय तो देखने से ही असर करता है, सुनने से असर करता है। महात्मा ने उदाहरण दिया है, सीता के रूप सौंदर्य के बारे में रावण ने देखा नहीं था, सीता कितनी सुंदर है, ये चीज सीता के सौंदर्यता को रावण ने प्रत्यक्ष देखा नहीं था। हालांकि स्वयंवर में आया था वह जनकपुर में, लेकिन तब तक तो सीता जी सामने आई ही नहीं थी, राम ने तो देखा था वाटिका में पुष्प तोड़ने जाते समय में, राम ने तो देखा था, देखने पर भी राम आसक्त नहीं हुए, और रावण आदियों ने देखा नहीं था। महाराज जनक की पुत्री का स्वयंवर है, उसमें धनुष यज्ञ रखा है, जो धनुष बाण तोड़ेगा वो कन्या से विवाह करेगा, ये सुनकर रावण भी वहीं पहुंच गया और धनुष बाण उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, सीता को देखा ही नहीं है, परंतु सीता से शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए आ गया वो, और राम ने सीता को देखा फिर भी नहीं गए। और कालांतर में जब राम को वनवास की प्राप्ति हुई, तो पंचवटी में जाकर जब राम रहने लगे चौमासा में, तो रावण की बहन सुर्पणखा आई, राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर आसक्त हो गई और कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तो राम ने भी मना कर दिया। लक्ष्मण के पास गई, राम ने कहा कि करना हो तो उससे कर ले, उसके साथ है ही नहीं, वो अभी अकेले बैठा है और मेरी तो साथ ही है। तो लक्ष्मण के यहां गई, लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो दास हूं और तुम मेरी पत्नी बनती हो तो वो दोनों का दास बनकर रहना पड़ेगा, तो तुम सुखी तो नहीं हो सकती हो, और तुम्हें चाहिए सुख। अच्छा तो यही है कि वो सम्राट हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, एक पत्नी क्या बहुपत्नी, जो कुछ भी हो सकता है, राम एक पत्नी हो गए तो कृष्ण बहुपत्नी हो गए, क्या हर्जा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई, वो समर्थ है, हम समर्थ नहीं है, हम तो एक पत्नी को भी इस समय तुम्हें भी ठीक से रख नहीं पाएंगे। फिर उधर चली गई, फिर उन्होंने हटा दिया, जाओ उधर चली गई। तो लक्ष्मण ने नाक कान काट दी, रोते हुए गई रावण के यहां। रावण ने कहा कि क्या हुआ? अब सुर्पणखा बात बदल कर कहने लगे, उसके नाक कटी थी किसके चलते? अपनी शादी करने के चलते, मैं राम से या लक्ष्मण से शादी करूं, इसके चलते वो वहां गई थी। अब जब नाक कान कट गया तो रावण के पास जाकर क्या कहती है पता है?
वो दोनों के पास इतनी सुंदर एक स्त्री है कि मैंने सोचा कि उसको तुम्हारे पास लाऊं और तुम्हारी पत्नी बनाऊं, तुम्हारी उसके साथ शादी हो जावे, ये सोचा था। तुम्हारी शादी के चक्कर में मेरा नाक कट गया। देखो, नाक कटा था तो अपने शादी के चक्कर में है। ये तो आप भाग्यशाली हैं कि शादी भी कर लिया और नाक भी बच गई। उसका तो न शादी हो पाया न नाक बच पाया है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। रावण ने कहा कि ऐसी बात है, बोले तीनों लोक में इतनी सुंदर हैं कि ऐसी स्त्री रत्न तुम्हारे महल में है ही नहीं। सब कुछ है लेकिन वो चीज जब तक नहीं है तुम्हारा ये सब होना बेकार है। ये बात किसने कह दी? शूर्पणखा ने। अब केवल सीता के रूप सौंदर्य के बारे में रावण ने खाली सुना। सुनना क्या था कि असर कर गया वो, देख लो, सुनते ही असर कर गया। देखा है ही नहीं, खाली सुनते ही असर कर गया। तो यदि ऐसा है तो मैं जैसे जिस तरह जैसे भी उसको प्राप्त करके छोड़ूंगा। परिणाम क्या हुआ? रावण के नाभि में अमृत लेकर वो जन्मा हुआ है कि नहीं? आप लोगों ने यही सुना है ना, उसके नाभि में अमृत था, रावण के जन्मजात अमृत था। और उसी के चलते राम कितनी बार उसके सिरों को काट काट के फेंक देते थे तब भी मरता नहीं था। तो यह रहस्य विभीषण को मालूम था। तो विभीषण ने कहा राम कि नहीं मरेगा ऐसे, फिर कैसे मरेगा? क्योंकि जन्मजात इसके नाभि में अमृत है, जब तक वो अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक ये नहीं मर सकता है। तो सबसे अच्छा यह है कि अग्निबाण का प्रयोग करके नाभि में उस अमृत का शोषण करो, तब जाकर वह मर सकता है, नहीं तो नहीं मर सकता है। तो भगवान राम ने वही काम किया। तो नाभि मंडल में अग्निबाण का प्रयोग करके अमृत का शोषण कर दिया। तो रावण को आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। इसका मतलब कि उसको किसी ने भेदी, विभीषण ने बताया होगा ये रत्न, तो उसको क्या पता कि मेरे नाभि में क्यों अग्निबाण मारता वो। तो वो भी एक कारण बना। अमृत होता हुआ भी मरना पड़ा, किसके चलते? विष के चलते कि विषय के चलते? है स्पष्ट हो गया, विषय और विषय। आपके माला कितने खतरनाक है पता है? कितना खतरा है ये। संत संतों की दृष्टि है, विषस्य विषयाणां च दृश्यते महदंतरम उपभुंक्त्वा विसंहन्ति विषया चक्षुषापि अयम। केवल आंख से देखा तो असर करता है, कान से सुना तो असर करता है, छू लिया तो असर करता है, सूंघ लिया तो असर करता है। विषय तो बड़े खतरनाक हैं। हाँ, सेवते पंच विरेव पंच एक प्रमादि सकतम न अन्यते यसेवते पंच विरेव पंच। तो ये तो विषय की बात हुई। तो बड़ा खतरनाक है, विष इतना खतरनाक नहीं है। सदा शिव भगवान शिव, क्योंकि भुवन भय भंग व्यसनीना है, संसार ही है भय, और उस भय को भंग करना जिसका स्वभाव है, आदत है, ऐसा व्यसन है। अतः भगवान शिव को मंगलाचरण के रूप में यहां स्मरण भी किया जा रहा है। मंगलम दिशतु मे विनायको

0: शिव, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के मानस उल्लास का मंगलाचरण है सुरेश्वराचार्य जी के। मंगलाचरण के बाद प्रयोजन बता रहे हैं। आत्मलाभात् परो लाभो नास्तीति मुनयो विदुः। संसार में हम लोग हिसाब किताब करते हैं, बहुत कुछ हिसाब किताब करते हैं। इस वर्ष इतना लाभ हुआ, इतना फायदा हुआ, हम लोग वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, आय व्यय का ऑडिट करते हैं तो पता चलता है कि कितना घाटा हुआ, कितना लाभ है। आत्मलाभात् परो लाभो नास्ति इति, संसार में आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ है ही नहीं, ये कौन कहता है? मुनयः, मनन करने वाले व्यक्ति ये कहते हैं। आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ नहीं है। आत्मा को भूलकर संसार प्राप्त कर लो तो भी आप घाटे में हो, और सारा संसार जाने के बाद आत्मा प्राप्त कर लिया तो आप सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप। हाँ। शंकराचार्य जी तो भाग्य के प्रतीक मानते हो, मानते हैं। किसको मानते हैं मालूम है आपको? हाँ। लोग कहते हैं कि महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो, हमारा कुछ भाग्य ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भाग्य खुल जाए, हम कुछ भाग्यशाली हो जाएं। तो शंकराचार्य जी भाग्यशाली होने का आशीर्वाद देते हैं, बता दूं आपको। हाँ, अशोक बनता करुणिक बनता कौपी न बनता खलु भाग्य बनता। तुम्हारा भाग्य उस समय उदित होगा जिस समय तुम्हारी एक कमीज और पॉइंट उतर जाए और शरीर में राख लपेटकर केवल कौपिन लंगोटी लगाकर पेड़ के नीचे बैठने की नौबत आ जाए, तब जाकर तुम भाग्यशाली हो गए। ये किसके आशीर्वाद है पता है? शंकराचार्य जी कहते आत्मलाभात् परो लाभो नास्ति इति। ये मूलम तरोर केवलम आश्रयंत भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमंत अशोकवंत करुणैकवंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। हम लोग तीर्थ यात्रा में निकले थे 6-7 महीने के लिए, तो गाड़ी थी, 4 साधु थे, एक ड्राइवर था, चलते थे। रात को कहीं हो गया तो बैठ गए, आश्रम मिल गया आश्रम में बैठ गए, नहीं तो गेस्ट हाउस होटल जहां मिले वहीं बैठ जाते थे। फिर सुबह जल्दी निकलना था और नहा धो के लंगोटी सुखा लिया, एक तरफ लंगोटी रख ली और पूजा पाठ किया, तब तक ड्राइवर कहता है चलो मारा चलो, अब देर हो गई चलो। तो फटाफट चले तो लंगोटी जो है वहीं कुर्सी में सुखाते थे कमरे में, कभी कहीं। अक्सर यात्रा में लंगोटी छूट जाती है क्योंकि वो छोटी सी चीज है, एक कोने में सुखाया, चलते समय में गीला क्या लेके चले, तो चलते समय भूल जाते हैं तो छूट जाती थी। तो हमने एक बार कहा ड्राइवर को, ए ड्राइवर गाड़ी रोको, क्या हुआ महाराज? फिर हमारा भाग्य तो वहीं छूट गया कमरे में, तो वो समझ नहीं पाया क्या बात है, भाग्य छूट गया आपका? अरे भाग्य वहां छूट गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, भाग्य को तो साथ में रखना ही है। तो वो समझ नहीं पाया ड्राइवर, महात्मा समझ गए थे। दूसरा महात्मा, अरे मेरा भी भाग्य वहीं छूट गया। अब सभी महात्मा को भाग्य छूट जाए तो आगे यात्रा कैसे चले? तो फिर गाड़ी घुमा के लाए तो सब अपने अपने लगौटी लेकर निकले, तो वो कहता है ड्राइवर आपको मिल गया भाग्य? बोले हाँ मिल गया। कहाँ है? बोले ये दिखा दिया लगौटी, ये भी कोई भाग्य होता है? वो कहता था, और हम कहते थे यही तो भाग्य है। अशोक बंत करुणिक बंत कौपी न बंत खाली भाग खलु भाग्यवंत। आत्मलाभात् परो लाभो नास्तीति मुनयो विदुः। मनन करने वाले, विचार करने वाले ज्ञानी पुरुषों की यह मान्यता है कि आत्मलाभ ही संसार में महत्वपूर्ण मुख्य लाभ है, और सब संसार की प्राप्ति तो घाटे में क्या, घाटे का सौदा है। तल्लाभार्थम उसी आत्मलाभ के प्रयोजन से कवि स्तौति ही, कवि क्रांतदर्शी स्तौति स्तुति करते हैं किसके, स्वात्मानं परमेश्वरम, अपने ही स्वरूप भूत जो परमात्मा है उसकी स्तुति करते हैं। किस तरह तो बोले विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, इसका प्रयोजन क्या बताया तो बोले आत्मलाभ। तो और आगे का प्रसंग क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Meipurul Nayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani. Ye Dakshin Bharat mein bahut प्रबल और बहुत उच्च कोटि के नायनमार या संत थे। इनका नाम है मेईपुरुलार। तमिलनाडु के दक्षिण आर्काट जिले के तिरुकोविलूर नामक प्रदेश के एक छोटे राज्य के नरेश मेईपुरुल नायनार थे। अब नायनार का मतलब संत भी है। उनका जन्म मलाडर जनजाति में हुआ था। वे एक न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। शिव स्तुति को भक्तिपूर्वक संगीत और नृत्य सहित प्रस्तुत करने की व्यवस्था में उनकी विशेष अभिरुचि थी। शिव के परम भक्त मेईपुरुल के हृदय में यह भावना दृढ़मूल हो गई थी कि शिव भक्त को का वेश धारण करने वाला साक्षात परमेश्वर के समान पूजनीय है। वे किसी भी शिव भक्त जो भी शिव की वेश या फिर उनकी शिव के जैसे सजा हुआ रहता था उनका वो सम्मान करते थे। वे शिव भक्तों की मनोकामनाओं को मुख के भाव से ही जानकर उन्हें पूर्ण करने में प्रयास करते। एक प्रतिद्वंदी नरेश मुक्तनादन ने उनसे युद्ध किया और बुरी तरह पराजित हो गया। शिव भक्तों के प्रति मेईपुरुल की निष्ठा और असीम श्रद्धा का को आधार बनाकर

0: दंतन था, उन्होंने उन्हें उस मुक्तनादन को रोक दिया और कहा, नरेश विश्राम कर रहे हैं। तापस वेशधारी प्रवंचक ने प्रबल क्रोध से कहा, हम राजा को परमार्थ तत्व का ज्ञान देने आए हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो? ये कहते कहते तपस्वी वेश में मुक्तनादन राजा ने शयन घर में पहुंच गया। राजा मेघपुरुल उस समय सो रहे थे, उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें जगाया। राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। पूछने पर तपस्वी ने बताया कि वह एक दुर्लभ आगम ग्रंथ लाया है और रानी के कक्ष से बाहर जाने पर ही उस ग्रंथ की आध्यात्मिक ज्ञान एकांत में राजा को प्रदान करेंगे। मेघपुरुल राजा की रानी अंतपुर में चली गई। तपस्वी को ऊंचा आसन प्रदान कर मेघपुरुल एक जिज्ञास शिष्य की भांति उनके समक्ष शांत भाव से बैठे रहे। उनका शीश झुका हुआ था। इसी क्षण शत्रु राजा मुक्तनादन ने राजा की पीठ पर खुकरी यानी कि कटार से आघात किया। शिवभक्त रूप में अपने हत्यारे को समक्ष में पाकर मेघपुरुल शीश झुकाए बैठे ही रहे। तभी उनका प्रहरी दंतन कक्ष में आया और कपटी तपस्वी को मारने के लिए खड्ग उठा लिया। रत्न लथपथ राजा मेघपुरुल ने आज्ञा दी, तत् ये हमारे अपने हैं, इनके शरीर पर शिव की वेशभूषा है, इसलिए ये शिव भक्त ही हुए, इन्हें नगर सीमा तक सुरक्षित छोड़ाओ। तदुपरांत राज्य के अन्य अधिकारियों को राजा ने समझाया, विभूत ईश्वरीय है, उसका सम्मान ही उदार का मूल मंत्र है। विभूति ईश्वरीय है, उसका सम्मान ही उदार का मूल मंत्र है। ऐसा कहते कहते राजा मेघपुरुल शिव के चरणों में चले गए। यह आश्चर्य की बात नहीं कि शत्रु के आघात से षड्यंत्र पूर्वक मारे गए मेघपुरुल नायनार को का गुणगान करते हुए सुंदरमूर्ति नायनार ने कहा। सुंदरमूर्ति नायनार जो कि बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा, विजयश्री से सुशोभित महाबली मेघपुरुल का मैं दास हूँ, जो मारे गए वे कैसे विजेता हो, ऐसा हम सोच सकते हैं। प्राचीन काल से ही तमिल प्रांत में मृत्यु को पराजय नहीं माना जाता है। किसी महान लक्ष्य के लिए जब प्राण उत्सर्ग करने की घड़ी आती है, उस समय अभय मृत्यु का वर्णन करने वाले सच्चे अर्थों में प्रभु का दास है। अपने सिद्धांत को जीवित रखने के लिए स्वयं के जीवन का परित्याग करने वाले ही विजेता हुए। तो इस निश्वर शरीर को प्रभु के भक्तों और प्रभु की भक्ति के लिए अर्पण कर दें, वे सच में विजेता हुए, वे सच में विजयश्री हुए। यह विचार करने की बात है कि मेघपुरुल राजा ने अपने सेवक को आज्ञा दी, शत्रु राजा को निरापद ले जाओ और सुरक्षित छोड़ाओ। शिव भक्त के वेश के लिए प्राण सहित सर्वस्व न्यौछावर करना ही उनका आदर्श था। शिव चिन्हधारी सच्चा है या झूठा, प्रभु का दास है या अथवा नहीं, उनके लिए यह विचार निरर्थक था। वे अपने सिद्धांत पर अटल रहे। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க் யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वा

आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी, इसका प्रसंग चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत यह कार्यक्रम 16 तारीख से 29 तारीख तक सायं 5:30 से 7 बजे तक का इस कार्यक्रम के आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी की 71वां श्लोक। आरूढ़ भक्त

ध्यानाञ्जनेन समवेक्षतम प्रदेशम् भित्वा महाबलिभिवीरीश्वर नाम मन्त्रै दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्मं ह्यते शिवते कृतार्थः भूदारतामुदवहाद्यतदपेक्षया श्री भूदारयेव किमत सुलभे लवस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनाम् पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य आशापाशक्ति

0: आसाशाटी कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु। तो कल के प्रसंग में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से रखते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका हूं, इसीलिए अपने व्यक्तियों के दोष और गुण को विचार नहीं किया जा सकता। आपके होने के कारण मुझ में कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक मनुष्यों में हजार हजार दोष रहते हैं, और जिस समय मनुष्य परमात्मा का हो जाता है, एक ही गुण ऐसा है कि परमात्मा के होते ही सभी दोष हट जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। एक नीति वाक्य है, सर्वे पदास्ति पदे निमग्नः। हाथी का जो पांव होता है बहुत बड़ा होता है, हाथी के अलावा सभी जीवों का पांव साइज में छोटा ही रहता है। हाथी जिस जगह पर वह अपने पांव रख लेता है और जितनी जगह वह पांव से घेर लेता है, उसके पांव के अंदर सभी जीवों के पांव आ जाते हैं। लेकिन चींटी जिस जगह पर अपने पांव रखती है उतने पांव में हाथी का पांव समाएगा नहीं। इसी तरह जीवन में भगवान का भक्त होना, इससे बढ़कर और कोई गुण है ही नहीं। जब इंसान भगवान का परम भक्त हो जाता है, उसके जीवन के सारे दोष हट जाते हैं। यदि कदाचित कोई दोष रह भी जाते हैं तो भी वो दोष भगवान के उपयोगी ही होते हैं। देख लो, भगवान के भक्त में यूं तो कोई दोष नहीं रहते, यदि कोई दोष रह भी जाते हैं तो वो दोष के बावजूद भी वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त हो जाता है वह भगवान के उपयोगी ही होते, क्योंकि परमात्मा को सभी चाहिए। इस संसार में परमात्मा को सभी प्रकार के व्यक्ति चाहिए, और शायद इसी दृष्टि से परमात्मा ने ये हर प्रकार के व्यक्ति का निर्माण किया है। संसार के सभी जीव परमात्मा की दृष्टि में सब उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। ये तो हम ये परिभाषा करते हैं कि ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। जिसको अनुपयोगी समझते हैं उसका परित्याग कर देते हैं सर्वथा। इसीलिए नीतिकार ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। बड़ा सा बड़ा चोर व्यक्ति भी काम लायक है संसार में, समझे कि नहीं। यदि चोर व्यक्ति परमात्मा के अयोग्य होता, अनुपयुक्त होता, खुद मक्खन और कपड़े चोरी करने के लिए प्रवृत्त न होते, हुए कि नहीं बोलो? इसका मतलब चोरी करना भगवान के लिए उपयोगी है। और यदि भक्त चोरी करता है तो भगवान के लिए अनुपयोगी नहीं है, भक्त चोरी करता है, ध्यान देना। इसलिए उसके चोरी करना भी भगवान के उपयोगी है। तुम यदि कहोगे नहीं महाराज, मैं तो संसार में सबसे बड़ा चोर हूं, चोर का सरदार हूं, ईमानदारी से भगवान से कहोगे तो तुम्हारा हमें आवश्यकता है, तुम हमारे पलटन में भर्ती हो जाओ, तो हमारी आवश्यकता है तुम्हारी, हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता था चोरी करने, अब तुम चले जाना मेरे तरफ से, और क्या वो काम तुम कर लिया करो। महाराज तुम्हारे तरफ से क्या क्या काम करना है, हैं? चोरी करना है भाई, क्योंकि तुमको चोरी करने की आदत है, हम तुम्हें चोरी करने का काम देंगे। महाराज क्या चोरी करना है? महाराज हम यहीं बैठे रहेंगे गोलोक में, कैलाश में, साकेत में यहीं बैठे रहेंगे, तुम हमारे तरफ से जाना भक्तों के दिल को चुरा के ले आना। चोरी करने की आदत है ना तुम्हें, ले आना भक्तों का दिल जो है वो चुरा के ले आना यहां। और जब तुम उसके दिल को चुरा कर लाओगे तो वो अपना दिल खोजता हुआ भटकेगा इधर उधर, कहां गया मेरा दिल, कहां गया मेरा दिल। तो उसको जब पता चलेगा कि उसका दिल परमात्मा के यहां है तो अपने दिल लेने के लिए आएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं वो? तो तुम यदि चोरी करना तुम्हारी आदत है तो कोई नहीं, हम तुमको भी काम देंगे, आओ हमारे यहां आओ, है? लेकिन ये नहीं समझना कि चोरी अच्छी चीज है तो हमसे दूर होकर संसार और संसारियों के वस्तु को चोरोगे, चोरी करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। इस श्लोक का अभिप्राय कल भी हमने इस पर काफी चर्चा की थी। हर काम है परमात्मा में, इसलिए वह सिर्फ तुम परमात्मा के हो जाओ तब तुम्हारे जीवन के सारे दोष भी परमात्मा के उपयुक्त हो जाएंगे, और उस दोष के चलते परमात्मा तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? सामान्यतः तो दोष के चलते सभी तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के बाद यदि तुम्हारे में वो दोष हैं तो भी तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रयोग में ले लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। तो ये श्लोक शंकराचार्य जी ने इन भावों से कहा, जड़ता, पशुता, कलंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला श्लोक है ये, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। जड़ता, पशुता, कलंकिता, कुटिलचरत्वम नास्ति मई देवा, तुम्हारा होने के कारण मुझ में ये दुर्गुण नहीं है, और कदाचित यदि अस्ति राजमौले, हे राजमौले, यदि ये दुर्गुण मेरे में है भी, जड़ता है, कलंकिता है, पशुता है, कुटिल चरत्व है भी, तो मैं तुम्हारे काम में तो आऊंगा आऊंगा। जड़ता है तो माला बनाकर पहन लो, है ना? पशुता है तो सवारी चढ़ लो, तुम्हें पशु ही चाहिए ना सवारी के लिए, तो नंदी चाहिए ना, पशु है कि नहीं नंदी, कलंकिता, यदि मेरे जीवन में कोई कलंकिता है तो सिर में लगा लो, तुम्हें कलंकी चाहिए सिर में लगाने के लिए। चंद्रमा कलंकी है इसलिए फिर भी सिर में लगा लिया, तो हमें सिर में नहीं लगाओ, तो नाक में लगाओ, कान में लगाओ, कहीं तो लगाओ, फिर भी तुम्हारे शोभा के पात्र ही बनूंगा मैं, विभूषण ही बनूंगा। कुटिलचारत्व तो तुम्हारे गले का आभूषण बन जाऊंगा, आदि आदि। अब उसी बात को यहां भक्ति सहित ध्यान का महत्व है। पहले किन श्लोकों से सिर्फ भक्ति की बात करते थे, अब भक्ति सहित ध्यान का क्या महत्व है। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम युक्तेर शिव स्मरण बाण गणेर रमोघई निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंद महावहति सुस्थिररा जलक्ष्मी। इस श्लोक एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रूपक यह है, कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा तभी बना जा सकता है जब वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रबलतम शत्रुओं को परास्त करता है, तब जाकर वह सुस्थिर राजलक्ष्मी, शत्रुओं को सर्वथा परास्त किए बिना उसकी राज्यलक्ष्मी सुस्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए अपने भारत का इतिहास रहा है, राजा लोग जब भी विलासी हुए, भोग और विलास में लगे, तब शत्रुओं ने आक्रमण किया और देश पराधीन हुआ, परतंत्र हुआ, पराधीन हुआ। अब राजा लोग यदि सुदृढ़ होते, सजग होते, सावधान होते, तब 1100 वर्ष ही पराधीनता का अनुभव भारतीयों को करना न पड़ता।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

शरद गुरु। शिव महिम्न स्तोत्र श्लोक मंत्र दो, साथ ही गान कीजिएगा।

0: अब मेरी स्तुति करनी योग्य है, यथार्थ है, मेरी स्तुति का आप स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूं कि मेरी स्तुति कितनी भी करने पर आपके आपका जो स्वरूप है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो महिमा है, उसे पार नहीं कर सकती है। फिर भी ये मेरा नम्र प्रयत्न आप स्वीकार कर लीजिए। देखिए, हमें सबको मालूम है कि परमात्मा का महिमा परमात्मा तक पहुंचना कैसा है। दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती है, इसीलिए लिखा है। दुर्गम है, दुर्लभ है। और भगवत गीता और उपनिषद में ऐसा भी आप सुनते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम। कोई करोड़ों में से, लाखों में से एक कोई उसको जानता है। जानने वाला लाखों में से किसी उसका श्रवण करता है, उसमें से कोई एक मनन, उसमें से कोई एक परमात्मा को प्राप्त करता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि वो लाख में से जो एक है वो मैं कैसे हो सकता हूं। और ऐसा जान के परमात्मा की स्तुति ही नहीं करनी, उनको जानने का प्रयास ही छोड़ देना, ये गलत है। इसीलिए यहां जो गंधर्व राज ने कहा है, ऐसी ही वृत्ति हमें सबको बनानी है कि जैसे भी आपको आए परमात्मा का नाम लेना, समझ में आए या नहीं आए, जैसे भी कोई भी प्रकार से परमात्मा का अंतकरण पूर्वक आकलन करना ही इच्छनीय है, अपेक्षित है। तो इस प्रकार अब क्या आगे स्तुति कर रहे हैं वो हम देखेंगे। देखिए, जब हम जानेंगे ना कि पुष्पदंत जी ने क्या कहा है, तब पता चलेगा कि सर्व उपनिषद का सार है यहाँ। भगवत गीता और उपनिषद का सार संग्रह है ये पूरा महिमन स्तोत्र। और जिसे सार संग्रह का पता है, परमात्मा के सगुण और निर्गुण गुण से जो स्तुति की गई है, वो ऐसी श्रेष्ठ श्रुति कर स्तुति करने वाले भी कहते हैं कि मेरी स्तुति कम है, मेरा महिमा ज्यादा नहीं है। यानी क्या है कि पता है, अंदर से तो उन्हें पता है कि मैं जान रहा हूं, फिर भी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, कर्ता भाव नहीं है कि मैं कुछ जान गया हूं। हमेशा नम्र, आप जितना जानते जाएंगे ना उतना नम्र बनते जाना, उतना कहना कि मैं नहीं जानता हूं। आपको ना अच्छा लगे तो भी आप गलती से भी कह देना कि मैं नहीं जानता हूं। खुद को तो ऐसा कहते ही रहना, क्यों? अहंकार नहीं बढ़ेगा। कम ही रहना, छोटे ही रहना, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त को कभी छोटा रखता ही नहीं है। हाँ, वो तकलीफ उनकी है, आप छोटे बने रहिए। आप छोटे बनने पर भी मिट्टी का इतना कण भी छोटा हो तो भी आपके जूते में लग के पर्वत तक पहुंच जा सकता है, वो पर्वत की टोच तक पहुंच सकता है। उसे किसी के जूते में रख के पर्वत तक पहुंचाना परमात्मा के हाथ का काम है। उसकी फिक्र हमें नहीं करनी है, हमें छोटा ही बने रहना है और उसके गुणगान स्तुति करनी। चाहे पता लग गया हो कि वो परमात्मा निर्गुण निराकार कैसा है, चाहे अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति ज्यादा से ज्यादा बन रही हो, चाहे निधिध्यासन आप करते हो, चाहे समाधि लगती हो, फिर भी अपनी उपाधि, अपना अहंकार छोटा ही रखिए। तो यहां कहते हैं अतीतव पंथनम, आपका जो महिमा है वो वाणी और मन का जो मार्ग है उसका उल्लंघन करता है। देखिए, अब ये कहां की बात कर दी कि मन और वाणी का उल्लंघन करता है, तो ये तो उपनिषद की बात कहने लगे। हाँ, अवांग अमनस अगोचरम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वो जो बात कही है, तो यहां तो उपनिषद आने लगे। देखिए, स्तुति, मुझे स्तुति आती नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं कर सके तो मैं कौन सी चीज हूं, और दूसरे ही वाक्य में क्या बोल रहे हैं, उपनिषद की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। देखिए, इतना कम, और हम कितने उपनिषद जानते हैं, कितना कम जानते हैं। कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्माओं से, उनकी कृपा से हमने कुछ सुन भी लिया तो हम कहते हैं कि सब जान लिया है, ये कैसे हो सकता है। हाँ, देखिए, मन और वाणी का भी उल्लंघन कर रही है, यानी मैं जान रहा हूं कि मन और वाणी आप तक नहीं पहुंच सकती है, उतने तक मैं आपको जान गया हूं कि आप कुछ ऐसे तत्व है जहां मन के विचार, मन के संकल्प विकल्प, यानी के देखिए मन नहीं पहुंच सकता यानी क्या कि परमात्मा ऐसा है या ऐसा है उनके बारे में ऐसा है ऐसा कहा नहीं जाता। अवर्णनीय है परमात्मा, अवर्णनीय जो उनका विशेषण है वो बताने के लिए मन, क्योंकि मन का क्या काम क्या है, अंतकरण जो दिया है उसमें मन की वृत्ति परमात्मा ने दी है, वो क्यों दी है, ये है कि नहीं है ये जानने के लिए। देखिए जब आप पुष्प को देखेंगे तब ये पुष्प है ऐसा नहीं है, पुष्प के अलावा जितनी भी चीज है ना पूरे जगत में वो सब ये पुष्प है कहने से नेगेट हो जाती है, अपने आप नेगेट हो जाती है। वो मन इतना जल्दी से इतनी स्पीड से विचार कर रहा है कि इतनी सारी चीज नहीं है और ये पुष्प है। तो कुछ भी आप कहते हैं कि ये है तो उसके साथ ये क्या नहीं है वो उसके साथ लग ही जाता है। अब परमात्मा का अभाव, परमात्मा ये नहीं है ऐसा तो कोई भी क्षण नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। अगर आपने कहा कि ये परमात्मा है तो जरूर कुछ नहीं है वो भी उसके साथ लग ही जाएगा, और कुछ नहीं है ऐसा तो कुछ लग ही नहीं सकता परमात्मा के बारे में क्योंकि सब कुछ ही वो है, इसलिए मन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं जानता हूं मन आपके तक नहीं पहुंच सकता, और जहां मन ही नहीं सोच सकता वहां वाणी की तो बात ही नहीं है क्योंकि वो वर्णन के योग्य ही नहीं है। वाणी को वर्णन करने के लिए नाम चाहिए, रूप चाहिए, आकार चाहिए, व्यक्त रूप चाहिए, ऐसा कुछ आप में नहीं है। जहां मन ही नहीं पहुंच सकता, सब कुछ आप है तो क्या कहेंगे। देखिए आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांच में से किसी को निर्देश करना है तो आप बता सकेंगे। पूरा आकाश प्लस वायु प्लस पृथ्वी प्लस अग्नि हाँ और जल, सब कुछ एक प्लस प्लस प्लस करके क्या जवाब आएगा भाई बताइए। तो ये पांच को एक कर दिया तो क्या जवाब आएगा। हाँ शरीर नहीं, शरीर में मन बुद्धि कम है, मैं ये पांच को ही मिक्स करने को बोलती हूं। हाँ आप बोल सकेंगे, नहीं आप नहीं बोल सकेंगे। तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये परमात्मा, ये सब जुड़ के क्या आप बोलेंगे। कैन यू एक्सप्लेन, ये सब जुड़ने के बाद सबका जोड़ भी क्या परमात्मा है। तो बोले सबका जोड़ भी ये परमात्मा नहीं है, उनमें से ही उत्पन्न हुआ है तो भी वो नहीं है, इसीलिए वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती। अभी कहा कि मन और वाणी का विषय आपका नहीं है। देखिए मैं यहां तक पहुंच सकता हूं आपको जानने के लिए, तो फिर आपको कैसे जाना जाता है वो भी मैं जानता हूं। आपका जो वाक्य है, जो दूसरा पद है, वो हम सुनेंगे तो लगेगा ये पुष्पदंत जी कौन थे, ऐसे ही नहीं लिखा है। कहा अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि ही, श्रुति भी अभिधत्ते चकित हो जाती है, चकित होके विस्मय हो जाती है, विस्मित हो जाती है, श्रुति भी विस्मित होकर आपको अभेद भाव से ही वर्णनित करती है। श्रुति ने क्या कह दिया, देखिए पुष्पदंत जी ने, उपनिषदों ने इतना भी कहा कि अवांग अमनस अगोचरम, पर श्रुति उसके आगे जाके भी क्या कहती है पता है, कि मन और वाणी की बात नहीं, आपको प्रस्थापित करने के लिए हम अतद व्यावृत्ति की मदद लेते हैं, अतद व्यावृत्ति की सहाय लेते हैं। अब ये क्या बात हुई परमात्मा को जानने की। अतद याने क्या, तत् याने क्या, हाँ ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम तत्त्वम असि, ये जो तत्पद जो है दैट, तत्पद परमात्मा का वाचक है, परमात्मा का निर्देशक है, नियरेस्ट निर्देशक है। हाँ जितना नजीक परमात्मा के जा सके उतना ये तत् जा सकता है मैक्सिमम, और इससे आगे बढ़ के मांडू के उपनिषद ने तो सब सीमाएं पार कर दी, उन्होंने चौथा ही कहा। हाँ तदेको अवशिष्ट, ये तीन अवस्थाओं से पर जो चौथी अवस्था अनुभव होती है वो चौथा है, जो भी इसके बाद का है वो है। यानी श्रुति क्या करती है, श्रुति उपनिषद परमात्मा को वाणी से नहीं प्रदर्शित कर सकते वो पता है श्रुति को, मन से भी नहीं प्रदर्शित कर सकते वो भी पता है, इसीलिए अपने को बचाने के लिए सेफ साइड के लिए क्या करती है, खूब अल्प शब्दों में अक्षरों में बता देती है। खूब यानी जितना, देखिए आप किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, आपको भीतर से पता है कि मैं जो कुछ भी कहती हूं वो 100% सत्य नहीं है इस व्यक्ति के बारे में, मैं बोलती तो हूं पर सत्य नहीं है, ऐसा अगर आपको भीतर से तो पता ही है फिर भी आपको कहना है, अच्छा या बुरा कुछ भी बोलना तो है, तो आप जब बोलेंगे तब मन क्या काम करेगा आपके भीतर? मन मैक्सिमम फिल्टर रखेगा कि भाई आपको अगर पता नहीं है इस व्यक्ति के बारे में और आप पहले तो पता नहीं है तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये क्राइटेरिया हो गया, ये नियम हो गया। फिर भी कोई पूछता है कि नहीं भाई हमें इन व्यक्ति के साथ कुछ मेल करना है, ये कौन है आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे पता नहीं है, पूरा मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, तो बोले कुछ तो बताइए, अच्छाई और बुराई कुछ तो बताइए, तो आप क्या करेंगे? बताते हुए जितना कम बता सकेंगे उतना ही आप बताएंगे, क्योंकि गलत भी हो सकता है हाँ और सही भी हो सकता है। तो श्रुति ने क्या कहा कि पहले तो श्रुति मौन ही हो जाती है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, दक्षिणामूर्ति भगवान मौन ही हो गए, बोलना ठीक ही नहीं है, और फिर भी कोई कहता है, शिष्य आते हैं, नहीं कुछ बताइए ब्रह्म के बारे में, कुछ बताइए, आपके लिए घर छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, जानना है, संन्यास भी ले लिया है, अब थोड़ा तो बताइए वो परमात्मा के बारे में, तो बोले हाँ बता देते हैं। तो क्या बताएंगे? जो उपनिषद जो है, जो ऋषि जो है, वो फिल्टर रख देते हैं। क्या फिल्टर रख देते हैं? कम से कम बताते हैं, यानी जो अगर उसमें कुछ गलती भी हो गई तो कम गलती होगी। तो श्रुति ने सेफ साइड ले ली कि भाई वाणी का विषय नहीं है तो भी मैं वाणी दे रही हूं अतद व्यावृत्ति, मैं वाणी दे रही हूं चौथा, मैं वाणी देती हूं चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, ये तुरीय परमात्मा है, ऐसा हम बता के अभिधत्ते। फिर चकित हो जाती है श्रुति। श्रुति चकित क्यों हो जाती है? क्योंकि श्रुति कहती है कि मन और वाणी नहीं जा सकते तो भी वाणी कहां से आ गई, चकित हो गए। चकित इसलिए हो गए कि वाणी से बताने के बाद भी वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए चकित हो गए, और चकित इसलिए हो गए कि मैंने किसी को सुनाया, उसने सुन भी लिया तो भी कुछ उसमें हुआ या नहीं हुआ, उसे पता लगा कि नहीं लगा, वो भी मुझे पता नहीं है, ये चकित ही हो गए आश्चर्य, और ये आश्चर्यमय परमात्मा है इसलिए चकित हो गए कि बताने के बाद मुझे जो हो रहा है वो ये परमात्मा है, बताना वाणी का विषय ये परमात्मा नहीं है। बहुत सारे कारणों से ये आश्चर्य आ गया, पर हमें ये सुखद आश्चर्य का अनुभव हमें भी करना है, पर कैसे करना है? तो श्रुति ने कहा एक ही रास्ता है अतद व्यावृत्ति का, व्यावृत्ति यानी निरोध है, निषेध है। तो तद यानी वो परमात्मा, और तद यानी जो जो वो परमात्मा नहीं है, यानी कि अनात्मा है, जो नाम रूपात्मक है, जो मैनिफेस्टेड है, जो अतद है, जो व्याप्त है, जो जन्मा हुआ है, जो देश काल और वस्तु से सीमित है, वो अतद यानी परमात्मा कैसा है? सर्वदेशीय है। तो जो भी वस्तु नाम रूपात्मक एक देशीय है वो अतद हो गई। परमात्मा अजन्मा है तो जो भी जन्मा हुआ है वो अतद हो गया। परमात्मा अवर्णनीय है तो जो भी जिस भी कोई भी चीज का आप वर्णन कर सके वो अतद कोटि में आ गया। परमात्मा अनिर्देशनीय है, आप जिससे इदम करके जो भी निर्देश कर सके वो अतद में आ गया। आपको ख्याल आया अतद क्या है? ये शरीर है, हाँ ये शरीर है तो अतद हो गया। आप जानते हैं कि ये शरीर है, निर्देशनीय है, वर्णनीय है, वर्णन कर सकते हैं, तो ये अतद व्यावृत्ति। तो अतद की व्यावृत्ति से, तो भाई अतद की व्यावृत्ति करने के लिए हम तैयार है, कैसे करनी चाहिए, निषेध कैसे करना चाहिए, क्या ये शरीर मन बुद्धि का संघात है, क्या ये पूरा नाम रूपात्मक जगत है उसे नाश कर देना है, उसे खत्म कर देना है हकीकत में, फिर वो पता लगेगा। तो बोले व्यावृत्ति ऐसे नहीं होगी। तो क्या मन से मान ले उसकी माला जपे? तो बोले नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ तो सूक्ष्म बुद्धि की बात है, मन और बुद्धि को तो आप भूल ही जाइए, वो व्यवहार में थोड़ा काम करके बैठ जाएगी, ज्यादातर बिगाड़ेगी थोड़ा अच्छा करेगी। हाँ, तो उसको तो भूल ही जाइए, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी हाँ दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया। तो ये सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है, पर कल मैंने बताया वो बात को जरा ख्याल रखना कि ये जो सीमित शक्तियां लेके हम आए हैं वो सीमित शक्तियों को इतना व्यय कर दिया है तो ये अतत भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शक्ति को आप संचय कीजिए। देखिए, देखना बुरा नहीं है पर ठीक ठीक देखिए, जहां भी कुछ निषेध देखना दिखाई दे आप वहां से हट जाइए। निषेध प्रपंच जो सुनाई दे, प्रपंच मुख से भी बोलना नहीं है, और कोई मुख से प्रपंच कर रहा है तो किसी की निंदा कर रहा है तो सुनिए मत, किसी की ज्यादा स्तुति कर रहा है तो भी सुनिए मत। तो ये सब बातें हैं, ये तो चित्त शुद्धि की बातें हैं, ये साधन तो आपको निरंतर तैयार रखना है, ये साधन से ही आगे बढ़ सकेंगे। कभी एक बार विवेक किया और चूक गया वो नहीं चलेगा, साधन तो अभी भी आपको तैयार ही रखना है। हमारी ओर से हमें इतना ही करना है। तो अतत जागृति शास्त्र ने कैसे बताई है, तो जहत और अजहत लक्षणा जो है, जहत अजहत लक्षणा, उसे भाग त्याग लक्षणा भी बोलते हैं। तो ये अतद व्यावृत्ति, अतद का निषेध कैसे करना है, तो बोले कि उसकी एक प्रक्रिया, लक्षणा लयाने एक प्रक्रिया है, अमुक अमुक लक्षण अमुक अमुक चिन्ह है, वो चिन्ह को कुछ करना है। तो बोले भाई क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो शब्द जो है संस्कृत के है, ये पारिभाषिक शब्द है इसलिए हमें लगता है कि कुछ नया है, अर्थ समझने के बाद यही चीज हमें सरल लगने लगेगी। देखिए, ये जो जहत अजहत से भी ज्यादा ये भाग त्याग जो है शब्द, वो ज्यादा समझ में आने वाला है। भाग याने कुछ है और त्याग याने कुछ त्यागना है, भाग का कुछ भाग का त्याग, पर क्या त्याग करना और क्या ग्रहण करना वो हम उदाहरण से समझ सकेंगे। शास्त्र में उदाहरण दिया है, जहत लक्षणा याने जो भी अर्थ कहा गया है कोई वाक्य में, एनी वन सेंटेंस, वो वाक्य में उसका जो भी अर्थ है वो पूरे अर्थ को निकाल देना, फिर ही उसका अर्थ घटित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः याने गंगा के प्रवाह में वो गाय का नेसड़ा जो होता है, गोट होती है, गौ गौ माता जहां हम रखते हैं उसे गोट कहते हैं, तो गोट, तो भाई गंगा के प्रवाह में गोट, ऐसा अगर हम बोले तो गंगा का प्रवाह कैसा है, आप दो मिनट के लिए भी दो सेकंड के लिए भी खड़े नहीं रह सकते, इतना प्रवाह है। जटाटवी गलत ज्वलत, ओ हो इतना प्रवाह है, क्यों, जटा कटाह संभ्रम। ये जो परमात्मा की, शिव परमात्मा की जो जटा है, वो जटा कटाह इतनी बड़ी है कि वो कटाह में से जब घूम घूम के वो पानी गंगा जी का आता है तो इतना प्रचंड है उसका जो जोर है, जो शक्ति जो है, तो वहां से निकल के गंगा जी आए तो वो शक्ति साथ में ही लेके आते हैं, इसीलिए गंगा जी का प्रवाह उतना है, क्योंकि वो मोमेंटम कहां से मिला है, परमात्मा की शिव की जटा से वो मोमेंटम मिला है, वहां घुमड़ घुमड़ के आ रही है। तो ऐसा जो प्रवाह है उसमें हम दो मिनट के लिए भी ठहर नहीं सकते, तो गौ माता का गोट कैसे रहेगा। तो भाई समझना क्या है, गंगा जी का प्रवाह पूरा अर्थ जो है वो निकाल डालिए, गंगा के तीर पे, गंगा के किनारे जो है गोट, वहां गौ माता है, वहां जाके आप उसकी सेवा कीजिए, ऐसा कहना है गंगायाम गोट। तो ये जहत लक्षणा। अच्छा, अजहत लक्षणा, अजहत लक्षणा याने अजहत, जहत याने प्रजहाति। देखिए भगवत गीता में क्या आता है, प्रजहाति यदा कामान, जहाति याने क्या, निकाल डालना, इतना आप समझ गए ना। तो अजहत लक्षणा याने कुछ निकालना नहीं है, याने वाक्य में से अर्थ निकालना नहीं है और बाहर से अर्थ लेना है। क्या लेना है, तो शास्त्र में उदाहरण है कि सफेद दौड़ रहा है, सफेद दौड़ रहा है याने क्या, कोई मनुष्य के बारे में तो ये हो ही नहीं सकता सफेद दौड़ रहा है, गौ माता भी नहीं हो सकती क्योंकि दौड़ रही है ऐसा कहना पड़ता। सफेद दौड़ रहा है याने भाई घोड़ा दौड़ रहा है, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहां सफेद दौड़ रहा है वो ऐसा का ऐसा ही रखा, और जहत कुछ भी जो शब्दार्थ है वो निकाला नहीं हमने, और ऊपर से हमने क्या किया, ऊपर से जो अर्थ है वो अंदर हमने रखा, बाहर से रखा अर्थ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अच्छा, तो ये जहत लक्षणा और जहत लक्षणा, अभी शास्त्र और ब्रह्म को यहां कैसे फिट करेंगे, हम कैसे रखेंगे? तो बोले कि अगर जहत लक्षणा ये परमात्मा तत्व में, शास्त्र कहता है कि ये परब्रह्म कैसा है, तो बोले तत्त्वमसि, वो परमात्मा मैं हूं, तो मैं ये परमात्मा हूं, ऐसा अगर गुरु बोलेंगे तत्त्वमसि, तो हमारी अनुभूति क्या होगी, अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं कहती हूं कि अहम ब्रह्मास्मि और यहां जहत लक्षणा अगर मैं लगाऊं मेरे ऊपर, तो अहम ब्रह्मास्मि तत्व जो है वो मुझे कहा गया बोध, जहत में क्या होता है, अर्थ निकाल डालते हैं और फिर अर्थ होता है, गंगा का प्रवाह निकाल दिया और अर्थ हुआ, यहां मैं ब्रह्म हूं उसमें से मैं निकाल दू तो अनुभव कौन करेगा, और ब्रह्म को निकाल दू तो भी क्या होगा, तो जहत लक्षणा लग नहीं सकती है। अजहत लक्षणा यानी तत्वम असि, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ही मैं मान लेने को तैयार हूं, अजहत लक्षणा कुछ निकालना नहीं है, पर मैं जीव भी हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि का संगात हूं, ऐसा जो विचार आ रहा है, और परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदेशीय है, और मेरी ये शरीर मन बुद्धि की उपाधि कैसी है, एक देशीय है, एककालीन है, देश और काल से बद्ध है, और मैं कैसा हूं, तो मैं अल्प शक्तिमान हूं, ये जीव जो है ये शरीर मन बुद्धि से कार्य अल्प ही हो सकते हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, यानी अजहत लक्षणा लग के, यानी ऐसा का ऐसा ही मैं रहूं और मैं ब्रह्म हूं ऐसा मैं नहीं कह सकती, और मुझमें से ये तत्पद या अहम पद निकाल दूं तो भी ब्रह्म प्रस्थापित नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है, तो शास्त्र ने कहा अतद व्यावृत्ति, यानी जहत अजहत दोनों लक्षणा लगाइए आपके भीतर। दोनों लक्षणा कैसे लगाने की, तो बोले कि जहत लक्षणा से क्या करना है, भाई जहत लक्षणा से जो ब्रह्म और जीव में हम जो जीव है, मैं जो कहती हूं कि मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं ये उपाधि वाली, मैं ये जानने वाली, मैं सोचने वाली, तो ये मैं करके जो जीव अल्पज्ञ अपनी जितनी उपाधियों को घेर के बैठा है, तो जीव की उपाधि, मेरी उपाधि क्या है, भाई मेरी उपाधि अविद्या है, अविद्या से मैं जानती नहीं हूं मेरे स्वभाव को, तो ये जीव की अविद्या की उपाधि है, तो क्यादा क्या है, ब्रह्म और जीव की जो विरोधाभासी जहत, कुछ तो निकाल देना है ना, तो ब्रह्म और जीव की जो विरोधाभास है, विरोधाभासी वृत्तियां है, वो जहत निकाल देनी है, तो यहां कौन सी कौन क्या क्या है वो हम देख लेंगे, तो जीव के पास अविद्या की उपाधि है, तो परमात्मा यहां ईश्वर है, देखिए ईश्वर और ब्रह्म में क्या फर्क है देख लीजिए, ये दो नहीं है, जगत कारणम ब्रह्म इति ईश्वरः, ये ब्रह्म ही जब जगत का उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बनता है, तब खाली नाम बदल जाता है, इंडिकेशन बदल जाता है, वो ईश्वर एक ही है, तो ये ईश्वर कौन सी उपाधि से जगत उत्पत्ति स्थिति और लय कर रहा है, तो बोले माया कार्यत्वात्, माया से परमात्मा पोते खुद तो अकर्ता है, परमात्मा अपनी शक्ति से, अचिंत्य माया शक्ति से ये पूरे जगत को उत्पन्न करते हैं, स्थिति करते हैं और लय करते हैं, तो ये परमात्मा के पास क्या है उपाधि, उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो बोले माया, तो माया शक्ति है, यहाँ अविद्या शक्ति है, जीव कैसा है, जीव अल्पज्ञ है, कम जानने वाला है, परमात्मा सर्वज्ञ है, यो वेद निहितम गुहायाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सबके अंदर है, सर्वांतर्यामी है, कैसे मुझे पता लगे, मैं क्यों मान लूं कि परमात्मा सर्वांतर्यामी है, इसीलिए कि कर्म का फल देने वाला वो परमात्मा है, आप नहीं, इसके नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है उसे पता है और वो कर भी रहा है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इसलिए अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है और सबका कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता है, इसलिए सर्वशक्तिमान है, हम अपने भी कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता नहीं बन सकते, सबकी तो क्या बात है, और इतना सोचने के बाद भी सोच लेना कि आप किसी के साथ अगर मन अहंकार करके देखो मैंने इसको बता दिया ना, मैंने इसको बराबर फल दिया, इसने मेरा इतना बुरा किया था मैंने इसको बता दिया, आप कैसे बता सकते हैं, और आपका बताया हुआ उस तक पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना, बीच में इतना बड़ा ब्रह्म खड़ा है कैसे पहुंचेगा और कभी कभी क्या होता है देखिए, बद्दुआ से भी तर जाते हैं। किसी की बद्दुआ भी लग गई ना, किसी ने हमारे बारे में गलत भी सोचा तो उसका भी परमात्मा उपयोग कर लेते हैं। हाँ, और हमारे लिए दुआ ट्विस्ट करके दुआ हो जाती है, वो आपको पता ही नहीं लगता, ये सीक्रेट है, आज सुन लीजिए। तो अगर आपको किसी का अच्छा नहीं करना है, आपको मन में बहुत द्वेष है और किसी का अच्छा नहीं करना है, तो बद्दुआ अब से मत देना। क्यों भाई नहीं दे? क्योंकि वो बद्दुआ भी काम लग जाती है, परमात्मा का तो सब काम लग जाता है। अघटित घटना पट्टी ऐसी माया, जो नहीं है वो करके दिखाना उसका काम है, तो अब बद्दुआ नहीं देना भाई, क्योंकि वो भी काम लग, आपके दुश्मन को काम लग जाने वाली है। इतना स्वार्थी बन के भी किसी को कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, वो काम लगने वाला है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो विरोधाभास अभी कहाँ दिखने लगा, तो बोले अल्पज्ञता और सर्वज्ञता में विरोधाभास है, दोनों निकाल दीजिए। फिर जीव के बारे में हमने दूसरा क्या, शक्तिमत्वता। हाँ, तो ये अल्पशक्तिमान है, ये सर्वशक्तिमान है, वो निकाल दीजिए। ये कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता सर्वशक्तिमान है। और ये जीव की उपाधि क्या है, तो बोले अविद्या उपाधि, तो ये अविद्या जीव में से निकाल दीजिए। और यहाँ परमात्मा की माया निकाल दीजिए, तो क्या बच जाता है, क्या रह जाता है? तो यहाँ जीव यानी क्या, अविद्या का अनुभव कौन कर रहा है? मैं बोलती हूँ ना कि मैं जानती हूँ या मैं नहीं जानती हूँ, तो ये यहाँ कौन बच गया ये निकालने के बाद? मैं के साथ जो था अविद्या निकल गई, मैं के साथ अल्पशक्तिमत्व निकल गया, अल्पज्ञत्व निकल गया, तो रह क्या गया? अनुभव करता मैं, शुद्ध अहम बच गया है। और यहाँ है जो परब्रह्म है, परब्रह्म को ब्रह्म जो बच गया, क्योंकि सर्वज्ञता निकाल दी, सब उपाधियां निकाल दी, तो बच क्या गया? ये ब्रह्म तत्व जो बच गया, उसे क्या कहा है शास्त्र ने, क्या कहा है? तत्त्वमसि, यानी निर्देश किसको है? तत् का निर्देश किसको है? त्वम का निर्देश किसको है? अहम प्रत्यय को कहा गया है कि वो ये ब्रह्म है। तो ये अहम प्रत्यय क्या हो गया? ब्रह्म दो हो सकते हैं क्या? ये आपका अहम ऐसा ऐसा और ये ब्रह्म अंदर आके मिल गया? नहीं, ये दोनों मिरर इमेज है, दोनों एक ही है, वो आपको समझ में आता है। यत साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्ते। ये गुरुजनों को, इसीलिए गुरुजनों को परमात्मा तक कहा जाता है, परमात्मा ही समझा जाता है, वो इसीलिए कि वो पदार्थ जो है उसे वो एक करके देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये कोई फुसलाने की बात नहीं है, ये कहा गया है, समझ में आया? तो ये जो उपाधियां, ये जहत सब उपाय, विरोधाभास का जहत हो गया, अजहत यानी क्या ऐसा का ऐसा ही रखना है, तो बोले अहम प्रत्यय और ब्रह्म प्रत्यय ऐसा का ऐसा ही रखना है। तो ऐड क्या करना है, वहां जो घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा शब्द हमने ऐड किया, तो यहाँ कौन सा पद ऐड करना है? असी पद, असी पद यानी इक्वल टू, वो ऐड करना है। दिस अहम इज ब्रह्म, दिस इज टू बी एडेड इन दिस अजहत लक्षणा। तो ये अतद व्यावृति, देखिए पुष्पदंत जी सिर्फ स्तुति कर रहे हैं और वो भी कम लगती है उन्हें कि मैं कम कर रहा हूँ, और इतनी ही कम हुई है स्तुति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda Saunaka Shaka Kandam 1 Sukta 3. Thank you.

0: நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் சிவதத்துவம். ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் லாங்குவேஜஸ் அதர் தேன் தமிழ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் சைவலஹரி. ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தீஸ் சேஞ்சஸ், தேர் வில் பி சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு ப்ரோக்ராம் டைமிங்ஸ். வி ட்ரஸ்ட் தட் யூ வில் கைண்ட்லி அக்செப்ட் தீஸ் ஷெட்யூல் சேஞ்சஸ் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் பேஷன்ஸ். வி ஆல்சோ ரெக்வஸ்ட் யூ டு என்கரேஜ் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு லிசன் டு அண்ட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் அவர் ரேடியோ சர்வீசஸ். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சக்சிந்தா வாசலமி மாதாவோ இஸ்னிவை வேணோ ஆப் சர்வபந்து. तो तैतिरीय उपनिषद को लेकर के शांति पाठ रूप मंगलाचरण को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें यह संकेत किया गया सन्नो मित्र शंभरुण सन्नो भवत्तर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तार भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ये जो प्रार्थना शांति पाठ मंत्र है, इसके अंतर्गत ऋषि जो है प्रार्थना करता हुआ संकेत करता है अपने कल्याण के लिए, और उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए बल को वांछित अर्थात इच्छित होते हुए वह ऐसा प्रार्थना करते हुए संकेत कर रहा है कि हे मित्र, आप जो है हमारा कल्याण करें या हमारे दुर्तों का शमन करें। तो ये संकेत किया जिस पे चर्चा की गई, ऐसे ही वरुण शब्द को लेकर के संकेत किया और आगे संकेत कर रहे हैं सन्नो भवत्वर्यमा। अर्यमा शब्द का प्रयोग किया तो इंद्रिय विशेष के देवताओं के रूप में भी इन्हें ग्रहण किया जाता, वो भी इनके अर्थ हैं। यहां अर्यमा शब्द का क्या अर्थ है तो दो शब्द हैं, अर्य आगे है मां। अर्य शब्द का अर्थ क्या है तो शास्त्र की दृष्टि से रि गतौ धातु से अर्य शब्द बनता है, अर्थात ज्ञानार्थक धातु से अर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत या सुशिक्षित या ज्ञान या श्रेष्ठ, ये उसके अर्थ है अर्य शब्द के। इसी अर्य शब्द से आर्य शब्द बनता है, माने वह अर्य का भाव जिसमें रहे उसे कहते हैं आर्य, माने जो सुसंस्कृत है, जो ज्ञानवान है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम गुणों से जो युक्त है, उसे ही आर्य शब्द से भी कहा जाता है। तो अर्य शब्द का अर्थ हुआ यहां माने श्रेष्ठ या ज्ञान, सुसंस्कृत सुशिक्षित, ये सारे के सारे उसके अर्थ हैं। आगे मां शब्द है, मां शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार मां कहीं निषेधार्थक संस्कृत में भी प्रयोग होता, निषेध के अर्थ में भी प्रयोग होता, और कहीं महाशब्द मां अपने को लेकर के भी कह दिया जाता। तो इस प्रकार से उसके अर्थ हैं, लेकिन यहां मां शब्द का अर्थ है मापना, और माप किससे होता है तो होता है मन।

0: सी। इसलिए मां शब्द का अर्थ है यहां पर मन। तो क्या हुआ, अर्यमन। तो अर्यमा शब्द उसी से बनाया। तो अब जो है इसका अर्थ हुआ मने सुसंस्कृत मन या श्रेष्ठ मन अथवा उन्नत मन, प्रागतिक मन, ये सब उसके अर्थ। तो ऐसा जो इन गुणों से विशिष्ट जो देव विशेष, उस देव विशेष से ही ऋषि प्रार्थना करता है कि आप हमको भी वह प्रगति, वह उन्नति, वह श्रेष्ठता, वह ज्ञान प्रदान करें। क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो इन गुणों से जो संपन्न देव है, ऐसे उस देव से वह ऋषि प्रार्थना करता है। तो यहां पर अर्यमन शब्द का या अर्यमा शब्द का अर्थ हो गया जहां पर एक सरलता है और जहां पर कुटिलता नहीं है, जहां पर श्रेष्ठता है, कनिष्ठता का जहां पर रूप नहीं है। तो कनिष्ठता श्रेष्ठता का विचार जहां है, सरलता और कुटिलता का निश्चय जहां पर है, प्रागतिक या उन्नति, प्रगति और अवनति का निर्णय जहां पर है, ऐसे निर्णय से संपन्न उस देव के लिए संकेत किया कि आप जो है वह शक्ति हमें भी दें जिससे हम एक न्याय को ग्रहण कर सकें, उन्नति को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो है ऋषि संकेत करता है कि शन्नो भवत अर्यमा, हे अर्यमा शन्नो भवतु, नह मेरे लिए आप जो है समनकारी हो, अर्थात मेरे अंदर जो कुटिलता है, मेरे अंदर जो अवनति है और मेरे अंदर जो कनिष्ठता है, संकीर्णता है, उसका आप निवर्तन करें, उसका आप समन करें, और इनका समन हो जाएगा तो कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यहां पर संकेत किया गया। तो ऐसा जब संकल्प वाला मन होता है, ऐसे संकल्प से युक्त मन होता है, तब वही मन हमारे बुद्धि के अंतर्गत विवेक पैदा करता है। और जब तक मन ऐसे न्यायुक्त प्रागतिक संकल्प वाला नहीं होता है, तब तक जो है हमारी बुद्धि में परिनिष्ठितता नहीं आती। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया, उन्होंने कहा कि वही बुद्धि परिनिष्ठित कब होगी। तो उसका संकेत करते हुए उन्होंने बतलाया कि बुद्धि को व्यवसायात्मिका बनाने के लिए, बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाने के लिए, बुद्धि को परिनिष्ठित बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन की प्रसन्नता, प्रसन्न चेतसो ह्यासुर बुद्धिर परिवतिष्ठते। जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाती। अब प्रश्न हुआ कि मन की प्रसन्नता क्या, हमने जो कामना की, कामना के अनुसार प्रयत्न किया और प्रयत्न के अनुसार हमें फल मिल गया तो मन प्रसन्न हो गया, कहा यह प्रसन्नता नहीं। तब मन की प्रसन्नता क्या, तब वहां संकेत किया कि मन की प्रसन्नता जो है, जैसे साहित्य के अंतर्गत प्रयोग आता है, अद्य प्रसन्न गंभीरम सरह, आज सरोवर बड़ा प्रसन्न है और गंभीर है। अब सरोवर की गंभीरता क्या है, सरोवर की प्रसन्नता क्या है, तो सरोवर की गंभीरता क्या होगी कि उसमें कोई तरंग नहीं उठ रही, उसमें कोई लहर नहीं उठ रही, ये सरोवर की गंभीरता होगी, ये स्थिरता होगी, उसका जल शांत है, स्थिर है। और उसकी प्रसन्नता क्या होगी, तो अब जब तरंग नहीं उठ रही है और तरंग न उठने से जल में कोई हलचल नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कंपन नहीं है, इसलिए वहां पर जो किनारों में धक्के लगने से जो मिट्टी उठ जाती है वो मिट्टी भी नहीं उठ रही, अर्थात उस मिट्टी से भी रहत है, मल से रहत है, उसका जल स्वच्छ। तो जैसे उसकी स्वच्छता और स्थिरता यही उसकी प्रसन्नता और गंभीरता है। वैसे ही मन रूपी सरोवर की, इसको भी हृदय कहते हो, इस हृदय रूपी सरोवर की प्रसन्नता क्या होगी, इसकी गंभीरता क्या होगी, तो यहां पर भी संकेत किया तो इसकी थोड़ी विलक्षण प्रसन्नता बतला दी। ये नहीं कहा कि इसमें कोई विचार न उठे, तरंग न उठे, ये नहीं कहा। तरंग उठे, लेकिन वह तरंग भी कैसी हो, तो इसके लिए पहले विपरीत तरंगों का निराकरण किया। तो वहां भगवान ने कहा राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आपके जीवन में संकल्प हो, आपके जीवन में अभिकांक्षा हो, लेकिन वो अभिकांक्षा, वो संकल्प कैसा हो, तो संकेत कर दिया राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग और द्वेष से रहित। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र में, भारतीय जो वांग्मय परंपरा है उसमें जो दर्शन शास्त्र है उसमें दुख का हेतु बतलाते हुए एक श्रृंखला की चर्चा की। क्या कहा? कि जब जीवन में अज्ञान आता है, जीवन में भ्रम आता है, जीवन में भूल आती है, और जब भ्रम आता है, भूल आता है, अज्ञान आता है, तो उस भ्रम को लेकर के होने वाला जो अहम, भूल को लेकर के होने वाला जो अहम, और जब भूल से होने वाला जो अहम है, भ्रमित जो अहम है, वो अहम क्या करता है, तो मम को उदित कर देता। अहम से मम भाव आ जाता है, और जहां पर अहम मम आया तो वहीं पर क्या आ जाता, का इच्छा पैदा हो जाती, कामनाएं हो जाती, और जहां कामना आ जाती है तो वहीं कामना आने पर ही राग और द्वेष भी आ जाते। और जब राग और द्वेष आ जाते हैं तो राग द्वेष के आने पर संबंध बन जाते, कहीं शत्रु का संबंध, कहीं मित्र का संबंध, तो संबंध बन जाते। और वो संबंध कैसे हैं, तो अयोग्य संबंध, जो योग्य नहीं है, ऐसे अयोग्य संबंध बनते हैं। और जब अयोग्य संबंध बन जाते हैं तो वो अयोग्य संबंध ही हमारे लिए दुख के हेतु बन जाते, और वही अयोग्य संबंध हमारे जन्म और मरण के हेतु बन जाते। ये परंपरा है, इसलिए भगवान ने भी संकेत कर दिया राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय ईश्वर, राग द्वेष से रहित होकर के, और फिर मन संकल्प करे, और वो मन जो संकल्प करेगा तो जहां राग और द्वेष नहीं होगा तो उस मन में जो संकल्प होगा वो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, और वो गंभीर होगा, उसमें एक स्थिरता होगी, स्थायित्व तो होगा, ऐसा संकल्प होगा। क्योंकि निर्मल जल में क्या होता, बिंब का है प्रतिबिंब या बिंब का रूप स्पष्ट दिखाई दे जाता, तो उसका संकल्प होगा। तो इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं, तो ऐसा जो मन, और ऐसे मन वाले से ही प्रार्थना करते, ऐसे मन का भी जो मूल देव है, ऐसे मन को धारण करने वाला है, ऐसे उस देव से प्रार्थना की कि आप जो है मेरा समन करें, अर्थात ही हमारे अंदर ये कुटिलता आदि जो है उसका निराकरण करें, हमारे अंदर जो अवनति कनिष्ठता संकीर्णता आदि है उसका निराकरण करें। और जब इस प्रकार से उनका निराकरण करेंगे तो हमारे अंतर्गत शुद्ध संकल्प वाला मन होगा, एक निर्णयात्मक न्यायात्मक मन होगा। जो मन संकल्प लेगा वो न्याय से युक्त होगा, जो मन संकल्प लेगा वो उन्नति देने वाला होगा, जो मन संकल्प लेगा वो ज्ञान देने वाला होगा। तो इस प्रकार का जब संकल्प आएगा तो उस संकल्प से बुद्धि सद असद का विवेक करने में समर्थ होगी, तो विवेक शालिनी बुद्धि प्राप्त होगी। और जब विवेक शालिनी बुद्धि प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी, निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी, और वो प्रगति हमारी लौकिक भी होगी और हमारी पारलौकिक भी प्रगति होगी। इसलिए यहां संकेत किया सन्नो भवत् त्वर्यमा, नह अर्यमा नह संभवतु। हे अर्यमन, हे अर्यमा, देव आप हमारे लिए क्या हो? कहा हमारे दुरितों को दूर करने वाले हो, हमारा समन करने वाले। समन किसका करना? दुरितों का। जो हमारे लिए अन्याय है, जो हमारे लिए अवनति को देने वाला, ऐसे गुण धर्मों को हमारे में से दूर कर दो। और उन गुण धर्मों को जब दूर कर दोगे तो वो गुण धर्म हमारे में फिर आ जाएंगे जिनके द्वारा हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी। और जब उन्नति प्रगति होगी तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो कल्याण स्वरूप हम हो जाएंगे। अब ये तो इसका भावार्थ है। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक उदाहरण सुना दें, क्योंकि गिरीश भाई कल कह रहे थोड़ा सरल, तो सरल जो है आख्यानों से उदाहरणों से ही होता है, क्योंकि नियम भी है। हमारे यहां शिक्षा के तीन रूप बदलाए, या जिसे उपदेश कहो, शिक्षा कहो, आगे शिक्षा की चर्चा भी आए, उसके तीन रूप हैं। एक तो प्रभु संबित शिक्षा होती है, एक मित्र संबित शिक्षा होती है, और एक कांता संबित शिक्षा होती है। तीन प्रकार की शिक्षाओं की हमारे यहां परंपरा है। अब जो है प्रभु संबित शिक्षा क्या है? प्रभु संबित शिक्षा ये है, जैसे प्रभु माने स्वामी, प्रभु माने क्या है? स्वामी, मालिक है। तो जैसे किसी फैक्ट्री के अंतर्गत और वहां पर जो कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों को आदेश देता है कौन? फैक्ट्री का मालिक, और उनसे कहता है कि आपको इस कच्चे माल को तैयार करना, दूसरे से कहता आपको इसे परिपक्व बनाना। अब जब ये कहता है तो क्या नौकर ये कहेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, या उसमें कोई संशोधन करेगा, परिवर्तन करेगा? यदि संशोधन परिवर्तन करेगा, उसे नहीं करेगा, तो वहां फैक्ट्री चलेगी नहीं, और फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मालिक उसे क्यों रखेगा, है ना? तो वहां पर नियम क्या है कि जैसा मालिक कह रहा है वैसा उस कर्मचारी को करना, उसमें उसे ऊहा पोह नहीं करनी, उसमें उसे नू नच नहीं करना, उसमें उसे संशोधन नहीं करना। इसे कहते हैं प्रभु संबित शिक्षा या प्रभु संबित उपदेश। ये कौन सा उपदेश है, कौन सी शिक्षा है? तो इसी को संकेत किया गया कि वेद से होने वाली जो शिक्षा है वो प्रभु संबित शिक्षा कहलाती है। वेद के वाक्यों में हम जो है नू और नच कर सकते नहीं, जैसा वेद कहता है वैसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें नू नच करने की सामर्थ्य, ऊहा पोह करने की सामर्थ्य नहीं है। तो वेद से होने वाली जो वैदिक शिक्षा है वो है प्रभु संबित शिक्षा। अच्छा, दूसरी शिक्षा बतलाई मित्र संबित शिक्षा। मित्र संबित शिक्षा क्या है? तो आप जैसे जानते हो दो मित्र हैं, तो एक मित्र संकल्प लेकर के कुछ कहता है तो उसका मित्र जो है देखता है कि इसमें कुछ न्यूनता है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए वो उसको प्रेरित करता, वो उसमें प्रश्न भी करता, तर्क भी करता कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से मित्र क्या करता है? संशोधन करता है, परिवर्धन करने की कोशिश करता है, और दोनों के वाद प्रतिवाद के द्वारा एक सिद्धांत निकल करके सामने आता है। इसे कहते हैं मित्र संबित शिक्षा। तो जितने भी हमारी स्मृतियां हैं या स्मृति ग्रंथ हैं वो सब क्या है? वो मित्र संबित उपदेश। स्मृतियों को मित्र संबित उपदेश या मित्र संबित शिक्षा का, इसलिए आप गीता में देखते है ना क्या है, वहां प्रश्न भी उठाया गया और उसका उत्तर भी दिया गया, और प्रश्न उत्तर पूर्वक एक सिद्धांत को निकाल करके दिया और समाधान भी किया गया, संवर्धन परिवर्तन आदि देखा। जितनी भी श्रुतियां हैं उनमें सब ये चर्चा की। तो ये तो हो गया मित्र संबित उपदेश, परस्पर का संवाद है जहां, और तीसरी शिक्षा जो हमारे यहां बतलाई गई वह कांता सम्मित शिक्षा। ये कांता सम्मित शिक्षा क्या? तो कांता शब्द का अर्थ आप जानते हो, है ना? ऐसे तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार जो अर्थ है उसी को ले। तो कांता शब्द का अर्थ है सती साध्वी जो अपनी धर्म पत्नी, उसे क्या कहते हो? कांता शब्द से कहते हो। तो कांता सम्मित शिक्षा क्या है? तो जैसे आप जो है कयादु के प्रसंग को सुनते हो, है ना, हिरण्यकशिपु को एक न्यायगत संकल्प कराने में जो है सहयोगी थी तो कौन थी? कयादु थी। तो सती साध्वी स्त्री क्या करती है, यदि उसका पति अन्याय के मार्ग में अन्याय के संकल्प में जा रहा है तो उसे न्याय पर लाने के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए वह क्या करती है? पहले वह उसकी सेवा करती, जैसे कयादु ने सेवा, और सेवा के द्वारा उसे प्रसन्न करती। प्रसन्न करने का मतलब उसे अपनी तरफ अभिमुख करना, और जब अभिमुख कर लेती है तो जो सिद्धांत है, जो सत्य है, वो उसके सामने प्रस्तुत करती। और जब व्यक्ति अभिमुख होता है तो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता। तो जितने भी इतिहास, पुराण, काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि और साहित्य, जितने भी ग्रंथ हैं, नाटक आदि भी, ये सब क्या है? ये कांता सम्मित शिक्षा है। क्योंकि हम जब नाटक आदि करते हैं या जो है हम आख्यान उपाख्यान इतिहास की चर्चा करते हैं तो वह सरलता से हमारी समझ में आ जाती है, और व्यक्ति उधर अभिमुख हो जाता है तो सारे शास्त्रों में यह नियम है कि उनके द्वारा वहीं पर सिद्धांत भी दे दिया जाता। तो आख्यान केवल आख्यान के लिए नहीं, आख्यान किस लिए है? अभिमुखीकरण करने के लिए, और फिर जो शास्त्र का सिद्धांत है वो समझाने के लिए, वो सिद्धांत को दे देते हैं। तो ये जितने ग्रंथ हैं वो सब क्या है? कांता सम्मित शिक्षा। तो अब श्रुति है तो ये तो वेद से होने वाली, लेकिन इसमें भी उपनिषदों को थोड़ा सरस बनाने के लिए इसमें प्रश्न उत्तर की चर्चा थोड़ी कर दी गई। तो अब वेद तो है वो सीधी सीधी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए जो है वो हम उसमें हमारे अंदर संशय हो जाता तो वो बना रहता, जल्दी निवृत्त नहीं हो पाता, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन जहां मित्रता संबंधी बात आ जाती वहां समझ में आ जाती, और जहां पुराण इतिहास को लेकर के बात आ जाती तो जल्दी समझ में आ जाती। तो जितने भी आख्यान आदि इतिहास प्रहण आदि के उदाहरण के ही रूप में दिए जाते हैं, और उदाहरण एक अंश की पुष्टि करता, सर्वांश की पुष्टि नहीं करता, एक अंश की पुष्टि करता। तो यहां पर भी उसी को लेकर के चर्चा करें। यहां पर जो शब्द बतलाया अर्यमा, तो अर्यमा शब्द का अर्थ बतला दिया, श्रेष्ठ मन कहो, श्रेष्ठ मन या प्रागतिक मन या उन्नत मन या ज्ञान संपन्न मन, ज्ञान वाले संकल्प वाला मन, उसे कहते हैं अर्यमा। ऐसे अर्यमा से प्रार्थना की तो उससे प्रार्थना करोगे तो वो ज्ञान, संस्कृतता, है सुशिक्षितता तुम्हारे में आएगी, जिसके द्वारा तुम सद असद का विवेक करने में समर्थ होगे, न्याय के मार्ग को जानने में समर्थ होगे, अर्थात सुख के मार्ग को जानने में समर्थ होगे। तो ऐसा संकेत किया, तो ऐसे उससे प्रश्न किया। तो यहां पर संकेत अब ये कर रहे, ये कब आता है? तो जब हम राग द्वेष आदि से रहित जो गीता की चर्चा की, मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन में शुद्ध संकल्प होता है, शुद्ध संकल्प से बुद्धि परिनिष्ठित होती है, बुद्धि परिनिष्ठित होती है तो उसमें जो है एक सद तत्व की ही जो है निश्चयता आती है, मैंने विवेक आता उसमें। और जब विवेक आता है, ऐसे बुद्धि के विवेक से हमें वह बल प्राप्त होता है कि जिससे हम अपने कल्याण को प्राप्त कर रहे। उदाहरण के लिए इसी संबंध में उदाहरण, एक टापू, उस टापू पर जो जनता रहती थी उसका एक राजा भी था। उस टापू पर रहने वाली जनता की प्रणाली कुछ विलक्षण थी, क्योंकि राजाओं के यहां जैसे राजा हुआ तो उसकी आगे संतति आने वाली क्रम से राजा बना दी जाती, प्रजातंत्र में जो है चयन की प्रक्रिया होती, लेकिन वहां पर राजतंत्र भी नहीं था, एक तरह से प्रजातंत्र तो था लेकिन उसकी चयन प्रक्रिया बड़ी विलक्षण थी। वो चयन प्रक्रिया क्या थी? वहां की जनता मिलकर की और राजा का चयन करती थी, लेकिन चयन करती थी लेकिन उनका नियम क्या था? उनका नियम बड़ा विलक्षण था, उस टापू पर एक वर्ष से अधिक कोई राजा राज्य नहीं करता। वो सारी जनता एक वर्ष तक राजा बनाती थी और उसको जो है परिवर्तित कर देती थी और दूसरा राजा बिठा देती। लेकिन एक और विलक्षण बात थी, वो विलक्षण बात क्या थी? जिसे एक वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, एक वर्ष तक तो वो अपना राज्य चलाता था, उससे कोई कुछ नहीं कहता था, उसकी बातों को स्वीकार करते थे, लेकिन एक वर्ष के बाद वह जनता जब दूसरे राजा का चयन करती थी तो प्रक्रिया उनकी क्या थी? वो जो जिस राजा को उन्होंने पहले बनाया था उसे पालकी पर बिठाते थे और पालकी पर बिठा करके सभी लोग मिलकर के, और जिसे नया राजा बनाते थे उसे भी साथ ले लेते थे और ले जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचते थे। और समुद्र के किनारे पहुंच करके फिर क्या करते थे? उससे जो भी चाबियां या जो भी वही खाते आदि थे, राज्य का जो भी तंत्र था, वो जिसे नया राजा बनाते थे उसे दिलवा देते थे और उसको नौका में बैठा करके और गहरे जल में ले जाते थे। जहां जल गहरा होता था वहां ले जाते थे और वहां ले जा करके उसको वहीं गहरे जल में डुबा देते थे और गहरे जल में डुबा देते थे और उसे किसी को निकालने भी नहीं देते थे और उसको वहीं छोड़, जब निकालने नहीं दोगे तो किसका क्या होगा। और आकर के जो नया राजा था तो शंखवेरी नादाद के साथ में उसे जो है लाते थे और उसे सिंहासन पर अभिषिक्त कर देते थे। ये प्रक्रिया थी। अब जो है वहां पर जो है जब राजा बनने की बात आती थी तो कोई राजा बनना नहीं चाहता और आपस में झगड़ा होता था तो लोग भी गाली देते थे। क्या देते? किसे राजा बना दिया जाए, ये गाली भी देते। अब ये प्रक्रिया वहां चलती थी, ऐसा चलता रहा। एक बार एक जो है राजा का चयन करने के लिए उन्होंने देखा किसको बनाया जाए, तो कुछ वर्षों पहले ही उस टापू पर वह व्यक्ति आया था जिसका नाम था बुध सिंह। उस बुध सिंह को उन्होंने चयन किया, जैसा नाम था वैसे गुण वाला था, है ना, बोध से संपन्न था, ये नाम भी उसका था बुध सिंह, अर्थात बुद्धिमान था। तो परिवार वाले जो है उसको बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जब उसको उस घर से उठाया गया तो सारा परिवार दुखी हो गया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம சைவம்.org இன் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள். பாடல் திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளி செய்த தோளுடைய செவியன். பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஸ்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

संस्थापनाय नमः ओम धर्मधाम्ने नमः ओम क्षमाक्षेत्राय नमः ओम भगवते नमः ओम भगनेत्रभिदे नमः ओम उग्राय नमः ओम पशुपतये नमः ओम तार्क्ष्याय नमः

कपर्दिनेक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ कामशासनाय नमः ॐ श्मशाननिलयाय नमः ॐ सूक्ष्माय नमः ॐ श्मशानस्थाय

अमृतपाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम महातेजसे नमः, ओम महाद्युतये नमः, ओम तेजोमयाय नमः, ओम अमृतमयाय नमः, ओम अन्नमयाय नमः,

ॐ सत्याय नमः। ॐ सर्वपापहराय हराय नमः। ॐ सुकीर्तये नमः। ॐ शोभनाय नमः।

नमः। ॐ अमृताय शाश्वताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ बाणहस्ताय प्रतापवते नमः। ॐ कमण्डलुधराय नमः। ॐ धन्विने नमः। ॐ अवाङ्मनसगोचराय नमः। ॐ अतीन्द्रियाय महामायाय नमः। ॐ सर्वावासाय नमः। ॐ चतुष्पथाय नमः।

वीर्याय नमः ॐ भूतचारिणे नमः ॐ पुरन्दराय नमः ॐ निशाचराय नमः ॐ प्रेतचारिणे नमः ॐ महाशक्तये महाद्युतये नमः ॐ अनिर्देश्य वपुषे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सर्वाचार्याय मनोगतये नमः ॐ बहुश्रुताय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ नियतात्मने ध्रुवाय नमः।

ॐ सर्वशासकाय नमः। ॐ नित्यप्रियाय नित्यनृत्याय नमः। ॐ प्रकाशात्मने प्रकाशकाय नमः।

नमः, ॐ गुरुदाय नमः, ॐ ललिताय नमः, ॐ भेदाय नमः, ॐ भावात्मने आत्मनि संस्थिताय नमः, ॐ वीरेश्वराय नमः, ॐ वीरभद्राय नमः, ॐ वीरासनविधये नमः।

ॐ परमायाय नमः ॐ शंभराय नमः ॐ व्याघ्रलोचनाय नमः ॐ रुचये नमः ॐ बहुरुचये नमः ॐ वैद्याय नमः ॐ वाचस्पतये नमः।

ध्रुवाय नमः, ॐ वसिष्ठाय नमः, ॐ कश्यपाय नमः, ॐ भानवे नमः, ॐ भीमाय नमः, ॐ भीमपराक्रमाय नमः, ॐ प्रणवाय नमः, ॐ सत्पथाय

विष्णु विभूषणाय नमः ओम ऋषये नमः ओम ब्राह्मणाय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम जन्म मृत्यु जरादिकाय नमः ओम पंचयज्ञ समुत्पत्तये नमः ओम विश्वेशाय नमः ओम विमलोदयाय नमः ओम अना

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

अन्तरिक्षा बृहस्पताये हविषा विधेमस्वाहा विश्वो ओ देवस्याने तुर्मर्तो ओ वुरीत सख्यम् विश्वो ओ राज ईशुध्यति द्युम्नम् रुनीत पुष्यसे स्वाहा ऋक्सामजो शिल्पे स्थस्थे वामाराभे ते मा आपातम् आस्य

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: भरद्वाजस्य प्रश्नेयम्
1: ब्रूहाद्भिरग्ने अतिभिर्हावो शुक्र

0: ॐ शनिश्चतुर्थः
1: ॐ नमः शिवाय. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ये है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण. नमः आदि करते हैं तो नमस्कारात्मक होता है, स्वस्ति आदि करते हैं तो आशीर्वादात्मक होता है. ये तीन प्रकार के मंगलाचरण हैं. वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण. यहां मंगलम दिशतु मे विनायको, मंगलम दिशतु मे सरस्वती. विद्या की अधिष्ठात्री देवी, ब्रह्म विद्या स्वरूपा सरस्वती. क्योंकि मनुष्य का प्रयोजन है ब्रह्म विद्या, और जिस विद्या को तुम चाहते हो उस विद्या के अधिष्ठाता जो देव हैं उनकी प्रसन्नता न हो तो वो विद्या फलीभूत नहीं होती है. संसार में हर चीज के एक एक वस्तु के एक एक अधिष्ठाता हैं, और उन अधिष्ठाता का अनुग्रह हुए बिना वो वस्तु हमारे उपयोगी नहीं हो पाता है. तो अपने उपयोगी होने के लिए अधिष्ठाता की कृपा बहुत जरूरी है. इसलिए ब्रह्म विद्या फलीभूत होने के लिए ब्रह्म विद्या अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती, उनकी कृपा बहुत जरूरी है. इसलिए कहा कि भगवती सरस्वती ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए वह मेरे लिए मंगलकारक हो. मंगलम दिशतु मे महेश्वरी. हाँ, महेश्वरी ये पूरी शक्ति का वाचक है, क्योंकि शंकराचार्य जी शिव और शक्ति दोनों के संयुक्त रूप में मानते हैं. और हमने कल सौंदर्य लहरी के बारे में चर्चा की थी, तो शंकराचार्य जी ने शक्ति की उपासना के क्रम में सौंदर्य लहरी की रचना करते समय पहले श्लोक में कहा, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति सक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुम अपि. तो शिव में जो इकार है वही शक्ति है, और इकार रहित तो जो शिव है वो केवल सब हो जाता है. और सब में यदि इकार का ई मात्रा का प्रवेश होता है तो फिर परमात्मा हो जाता है. ई यदि हट गया तो सब, और ई जुड़ गया तो शिव. तो सबको शिव बनाने वाला कौन है? शक्ति. इकार यही शक्ति का प्रतीक है. तो समस्त जगत को, जड़ात्मक जगत को भी चेतनात्मक बना के दिखाना, और दोषात्मक जगत में गुणात्मक बनाकर दिखाना, दुखात्मक जगत में सुखात्मक बनाना, असुचि अपवित्रता में पवित्र और सुचिता आदि बना देने की क्षमता उसी शक्ति में है. इसीलिए उसके अनुग्रह भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मंगलम दिशतु में महेश्वरी, क्योंकि महेश्वरी और महेश यानी महादेव शिव की शक्ति है। मंगलम दिशतु में सदा शिव, अंत में भगवान शिव जो ब्रह्म विद्या के रूप हैं यानी ब्रह्म रूप हैं, परमात्मा है, वह मंगल हमारे लिए मंगल कारक हो। सदाशिव माने हमेशा कल्याण करना जिनका स्वभाव है। पुष्पदंताचार्य जी ने इस सदाशिव का इस तरह व्याख्या की है, भुवन भंग व्यसनिना, भुवन भय भंग व्यसनिना, भगवान शिव के लिए कहा भुवन भय भंग व्यसनिना। भगवान शिव का व्यसन क्या है, आदत क्या है? व्यसन माने आदत, तो उनकी आदत क्या है? तो बोले भुवन भय, उसको भंग करना ही उनकी आदत है। उस प्रसंग का स्मरण करते हुए पुष्पदंताचार्य जी ने वाक्य कही, जब समुद्र मंथन हुआ, अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रीनयन विषम सम हृतवता, बिना समय में ही समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जो निकला हुआ कालकूट था, जहर था, उस जहर से बिना समय ही सारा पृथ्वी यानी ब्रह्मांड को नष्ट करना लग गया वो जहर। अकांड ब्रह्मांड क्षय, बिना समय में प्रलय होने का कोई समय आया नहीं, फिर भी ये प्रलय कर रहा है, कौन कर रहा है? तो विष कालकूट, उसको देखकर सब भगवान शिव के प्रार्थना करने लग गए। चकित भयभीत देवासुर, देवता असुर मनुष्य सब भयभीत हुए और भयभीत होकर भगवान शिव की प्रार्थना में लग गए और उनकी प्रार्थना को देखकर उनके भय का जो कारण था उसको भंग कर दिया। विधेयस्यासिद्य त्रिनयन विषम समृतवत, वह त्रिनयन भगवान शिव ने उन सारे विष का संहार कर लिया। देखो तीन नेत्र वाले ही विष का संहार कर सकते हैं, अन्यथा एक नेत्र वाले दो नेत्र वाले विष का संहार नहीं कर सकते। विषय ही विष है, आप लोगों को कई बार वेदांत के प्रसंग में हमने बताया है, संसार के पदार्थों को वेदांत के शब्दों में एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन पदार्थों के लिए वह शब्द है विषय। आप लोगों ने गले में माला डाल दी है ना, यहां के बैठते ही अपनी माला डाल दी, वेदांत इसको क्या बोलता है पता है? विषय। वेदांत इसका नाम क्या है? वेदांत की दृष्टि में विषय। संसार के पदार्थों का नाम विषय, यह भी तो एक पदार्थ है, तो विषय। ये प्रिय है, इसीलिए प्रिय विषय है संसार में, इसको भी विषय बोलते हैं, इसको भी विषय बोलते हैं, जो भी नाम रूप है उसको क्या कहते हैं? विषय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं और इस माला में वही तो पांच हैं, है कि नहीं बोलिए? इसमें गंध भी है, इसमें रूप भी है, इसमें रस भी है, इसमें स्पर्श भी है, तो ये विषय है। और इसीलिए वेदांत ने इसको विषय कहा, क्योंकि इसमें विष भरा हुआ है। और हमारे दृष्टि से तो आपको कहें, आपने गले में विष डाल दी है, बस समझ गए ना? क्या डाल दिया? विष डाल दिया, क्योंकि विष तो है ही है, और यकार और जुड़ गया तो क्या हुआ विषय? आप लिख लो, कागज है तो बीस लिख लो और विषय लिख लो, तो विषय लिखने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है। पहले बीस लिखकर फिर यह जोड़ दो पीछे, तो क्या हुआ विषय हुआ। तो यह जोड़ते ही बीस हट गया, बीस तो है ही है, यह और जुड़ गया है। इसलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महद अंतरम। शिष्यों को समझाते हैं, हे शिष्यों तुम लोगों की दृष्टि में विष और विषय में क्या अंतर है? बोले महाराज विष तो बहुत खतरनाक है, विषय तो ऐसा लगता नहीं है, इसलिए विषय तो बहुत अच्छा है, विष तो बड़ा खतरनाक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम गलत करते हो, विषय तो और भी खतरनाक है, विष तो फिर भी ठीक है। विष और विषय में बड़ा अंतर है, विषय तो और भी खतरनाक है। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज वो कैसे, ये माला आपने गले में डाल दी तो उससे क्या नुकसान हुआ हमारा? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और विष तो यदि मिल जाता तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती। शंकराचार्य जी कहते हैं उपभुंक्त्वा विषम हन्ति विषया चक्षुषाप्ययम्। विष तो सेवन करने के बाद जिह्वा में लगाने पर ही उसका असर होता है, विष देखने से असर नहीं करता है, करता है विष ये नाम सुनने से असर करता है, ये विष है करके आंखों से देखने से असर करता है नहीं करता है, छूने से भी असर नहीं करता है, सुनने से भी असर नहीं करता है, हाँ सूंघने से भी असर नहीं करता है, वो तो जिह्वा में लगाओ भोगने से ही विष असर करता है। लेकिन विषय इतना खतरनाक है कि आंख से देख लिया कि असर कर लेता है, करता है कि नहीं बोलो। एक यहां अभी कथा समाप्त तो हो जाए, ऐसा न हो किसी के हीरा का टॉप गिर जाए है? तो उसको जुआ में रखोगे तो मरेगा कि नहीं? कोई नहीं मरेगा, और बीस जुआ के रखते ही मर जाएगा है ना। हम लोग तो यही मानते हैं ना कि बीस में और ये विषय में कितना अंतर है, लेकिन मन उसको देखे कि ये हीरे का है, करते ही तुम्हारे पांव वहीं खड़ी हो जाए, रुक जाएंगे, चाहे कितनी हतार हो तुम वहां रुक जाओगे, इधर उधर देखोगे, सब चले जाएं तब हम उठाएं। आप लोग ऐसा नहीं करोगे लेकिन ऐसा करने वाले बहुत मिलते हैं, दिख जाए तो फर्श से पहले तो पांव से उसको दबाएंगे और वहीं खड़े हो जाएंगे, और पीछे वाले कहेंगे चलो चलो आगे बढ़ो, बोले नहीं तुम जाओ मैं थोड़ा काम है तुम जाओ, तो सब चले जाएंगे, तब फिर वो उठा के जेब में डालेगा। विषय तो देखने से ही असर करता है, सुनने से असर करता है। महात्मा ने उदाहरण दिया है, सीता के रूप सौंदर्य के बारे में रावण ने देखा नहीं था, सीता कितनी सुंदर हैं, ये चीज सीता के सौंदर्यता को रावण ने प्रत्यक्ष देखा नहीं था, हालांकि स्वयंवर में आया था वहां जनकपुर में, लेकिन तब तक तो सीता जी सामने आई ही नहीं थी। राम ने तो देखा था वाटिका में पुष्प तोड़ने जाते समय में, राम ने तो देखा था, देखने पर भी राम आसक्त तो नहीं हुए, और रावण आदियों ने देखा नहीं था। महाराज जनक की पुत्री का स्वयंवर है, उसमें धनुष यज्ञ रखा है, जो धनुष बाण तोड़ेगा वो कन्या से विवाह करेगा। ये सुनकर रावण भी वहीं पहुंच गया और धनुष बाण उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, सीता को देखा ही नहीं है, परंतु सीता से शादी करने के लिए ब्याह करने के लिए आ गया वो, और राम ने सीता को देखा फिर भी नहीं गए। और कालांतर में जब राम को वनवास की प्राप्ति हुई तो पंचवटी में जाकर जब राम रहने लगे चौमासा में, तो रावण की बहन सुर्पणखा आई, राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर आसक्त हो गई और कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो राम ने भी मना कर दिया और लक्ष्मण के पास गई। राम ने कहा कि करना हो तो उससे कर ले, उसके साथ है ही नहीं, वो अभी अकेले बैठा है और मेरी तो साथ ही है। तो लक्ष्मण के यहां गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो दास हूं और तुम मेरी पत्नी बनती हो तो वो दोनों का दास बनकर रहना पड़ेगा, तो तुम सुखी तो नहीं हो सकती हो और तुम्हें चाहिए सुख। अच्छा तो यही है कि वो सम्राट हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, एक पत्नी क्या बहुपत्नी जो कुछ भी हो सकता है, राम एक पत्नी हो गए तो कृष्ण बहुपत्नी हो गए, क्या हर्जा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई, वो समर्थ है, हम समर्थ नहीं है, हम तो एक पत्नी को भी इस समय तुम्हें भी ठीक से रख नहीं पाएंगे। फिर उधर चली गई, फिर उन्होंने हटा दिया, जाओ उधर चली गई। तो लक्ष्मण ने नाक कान काट दी, रोते हुए गई रावण के यहां। रावण ने कहा कि क्या हुआ। अब सुर्पणखा बात बदल कर कहने लगे, उसके नाक कटी थी किसके चलते, अपनी शादी करने के चलते, मैं राम से या लक्ष्मण से शादी करूं, इसके चलते वो वहां गई थी। अब जब नाक कान कट गया तो रावण के पास जाकर क्या कहती है पता है, वो दोनों के पास इतनी सुंदर एक स्त्री है कि मैंने सोचा कि उसको तुम्हारे पास लाऊं और तुम्हारी पत्नी बनाऊं, तुम्हारी उसके साथ शादी हो जावे, ये सोचा था, तुम्हारी शादी के चक्कर में मेरा नाक कट गया। देखो नाक कटा था तो अपने शादी के चक्कर में है। ये तो आप भाग्यशाली हैं कि शादी भी कर लिया और नाक भी बच गई, उसका तो न शादी हो पाया न नाक बच पाया, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। रावण ने कहा कि ऐसी बात है, बोले तीनों लोक में इतनी सुंदर हैं कि ऐसी स्त्री रत्न तुम्हारे महल में है ही नहीं, सब कुछ है लेकिन वो चीज जब तक नहीं है तुम्हारा ये सब होना बेकार है। ये बात किसने कह दी, सुर्पणखा ने। अब केवल सीता के रूप सौंदर्य के बारे में रावण ने खाली सुना, सुनना क्या था कि असर कर गया, वो देख लो सुनते ही असर कर गया, देखा है नहीं, खाली सुनते ही असर कर गया। तो यदि ऐसा है तो मैं जैसे जिस तरह जैसे भी उसको प्राप्त करके छोड़ूंगा। परिणाम क्या हुआ, रावण के नाभि में अमृत लेकर वो जन्मा हुआ है कि नहीं, आप लोगों ने यही सुना है ना, उसके नाभि में अमृत था, रावण के जन्मजात अमृत था और उसी के चलते राम कितनी बार उसके सिरों को काट काट के फेंक देते थे तब भी मरता नहीं था। तो यह रहस्य विभीषण को मालूम था, तो विभीषण ने कहा राम कि नहीं मरेगा ऐसे, फिर कैसे मरेगा, क्योंकि जन्मजात इसके नाभि में अमृत है, जब तक वो अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक यह नहीं मर सकता है। तो सबसे अच्छा यह है कि अग्निबाण का प्रयोग करके नाभि में उस अमृत का शोषण करो, तब जाकर वह मर सकता है, नहीं तो नहीं मर सकता है। तो भगवान राम ने वही काम किया, तो नाभि मंडल में अग्निबाण का प्रयोग करके अमृत का शोषण कर दिया। तो रावण को आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया, इसका मतलब कि उसको किसी ने भेदी, विभीषण ने बताया होगा ये, न तो उसको क्या पता कि मेरे नाभि में क्यों अग्निबाण मारता वो, तो वो भी एक कारण बना। अमृत होता हुआ भी मरना पड़ा, किसके चलते, विष के चलते कि विषय के चलते, स्पष्ट हो गया, विषय और विषय, आपके माला कितने खतरनाक है पता है कितना खतरा है ये, संत संतों की दृष्टि है, विशस्य विषयाणां च दृश्यते महदंतरम उपभुंक्त्वा विषमहन्ति विषया चक्षुषापि अयम्। केवल आंख से देखा तो असर करता है, कान से सुना तो असर करता है, छू लिया तो असर करता है, सूंघ लिया तो असर करता है। विषय तो बड़े खतरनाक है। हाँ, यसेवते पंच विरेव पंच, एक प्रमादि सकतम न अन्यते यसेवते पंच विरेव पंच। तो ये तो विषय की बात हुई, तो बड़ा खतरनाक है। विष इतना खतरनाक नहीं है, सदा शिव भगवान शिव, क्योंकि भुवन भय भंग व्यसनीना है, संसार ही है भय, और उस भय को भंग करना जिसका स्वभाव है, आदत है, ऐसा व्यसन है। अतः भगवान शिव को मंगलाचरण के रूप में यहां स्मरण भी किया जा रहा है। मंगलम दिशतु मे विनायको,

ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के मानस उल्लास का मंगलाचरण है सुरेश्वराचार्य जी के। मंगलाचरण के बाद प्रयोजन बता रहे हैं। आत्मलाभात् परो लाभो नास्तीति मुनयो विदुः। संसार में हम लोग हिसाब किताब करते हैं, बहुत कुछ हिसाब किताब करते हैं। इस वर्ष इतना लाभ हुआ, इतना फायदा हुआ, हम लोग वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, आय व्यय का ऑडिट करते हैं तो पता चलता है कि कितना घाटा हुआ, कितना लाभ है। आत्मलाभात् परो लाभो नास्ति इति, संसार में आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ है ही नहीं, ये कौन कहता है? मुनयः, मनन करने वाले व्यक्ति ये कहते हैं। आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ नहीं है। आत्मा को भूलकर संसार प्राप्त कर लो तो भी आप घाटे में हो, और सारा संसार जाने के बाद आत्मा प्राप्त कर लिया तो आप सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप। हाँ। शंकराचार्य जी तो भाग्य के प्रतीक मानते हो, मानते हैं। किसको मानते हैं मालूम है आपको? हाँ। लोग कहते हैं कि महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो, हमारा कुछ भाग्य ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भाग्य खुल जाए, हम कुछ भाग्यशाली हो जाएं। तो शंकराचार्य जी भाग्यशाली होने का आशीर्वाद देते हैं, बता दूं आपको? हाँ। अशोक बंत करुणे कबंत कौपी न बंत खलु भाग्य बंत। तुम्हारा भाग्य उस समय उदित होगा जिस समय तुम्हारी एक कमीज और पॉइंट उतर जाए और शरीर में राख लपेटकर केवल कौपिन लंगोटी लगाकर पेड़ के नीचे बैठने की नौबत आ जाए, तब जाकर तुम भाग्यशाली हो गए। ये किसके आशीर्वाद है पता है? शंकराचार्य जी कहते आत्मलाभात् परो लाभो नास्ति इति। ये मूलम तरोर केवलमाश्रयंत भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत अशोकवंत करुणैकवंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। हम लोग तीर्थ यात्रा में निकले थे 6-7 महीने के लिए, तो गाड़ी थी, 4 साधु थे, एक ड्राइवर था, चलते थे। रात को कहीं हो गया तो बैठ गए, आश्रम मिल गया आश्रम में बैठ गए, नहीं तो गेस्ट हाउस होटल जहां मिले वहीं बैठ जाते थे। फिर सुबह जल्दी निकलना था और नहा धो के लंगोटी सुखा लिया, एक तरफ लंगोटी रख ली और पूजा पाठ किया, तब तक ड्राइवर कहता है चलो महाराज चलो, अब देर हो गई चलो। तो फटाफट फटाफट चले तो लंगोटी जो है वहीं कुर्सी में सुखाते थे कमरे में, कभी कहीं कभी कहीं। अक्सर यात्रा में लंगोटी छूट जाती है क्योंकि वो छोटी सी चीज है, एक कोने में सुखाया, चलते समय में गीला क्या लेके चले, तो चलते समय भूल जाते हैं तो छूट जाती थी। तो हमने एक बार कहा ड्राइवर को, ए ड्राइवर गाड़ी रोको, क्या हुआ महाराज? फिर हमारा भाग्य तो वहीं छूट गया कमरे में, तो वो समझ नहीं पाया क्या बात है, भाग्य छूट गया आपका? अरे भाग्य वहां छूट गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, भाग्य को तो साथ में रखना ही है। वो समझ नहीं पाया ड्राइवर, महात्मा समझ गए थे। दूसरा महात्मा, अरे मेरा भी भाग्य वहीं छूट गया। और सभी महात्मा को भाग्य छूट जाए तो आगे यात्रा कैसे चले? तो फिर गाड़ी घुमा के लाए तो सब अपने अपने लगौटी लेकर निकले, तो वो कहता है ड्राइवर आपको मिल गया भाग्य? बोले हाँ मिल गया। कहाँ है? बोले ये दिखा दिया लंगोटी, ये भी कोई भाग्य होता है? वो कहता था और हम कहते थे यही तो भाग्य है। अशोक बंत करुणिक बंत कौपी न बंत खाली भाग खलु भाग्य बंत। आत्मलाभात् परो लाभो नास्तीति मुनयो विदुः। मनन करने वाले विचार करने वाले ज्ञानी पुरुषों का ये मान्यता है कि आत्मलाभ ही संसार में महत्वपूर्ण मुख्य लाभ है,
और सब संसार की प्राप्ति तो घाटे में क्या, घाटे का सौदा है। तल्लाभार्थम, उसे आत्मलाभ के प्रयोजन से कवि स्तौति ही, कवि क्रांतदर्शी स्तौति, स्तुति करते हैं। किसके? स्वात्मानं परमेश्वरम्, अपने ही स्वरूपभूत जो परमात्मा है उसकी स्तुति करते हैं। किस तरह? तो बोले विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। इसका प्रयोजन क्या बताया? तो बोले आत्मलाभ। और आगे का प्रसंग क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிஸ்னர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Meipurul Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Bhaktoon, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani. Ye Dakshin Bharat mein bahut prabal aur bahut uch koti ke Nayanmar ya sant the. इनका नाम है मेईपुरुलार। तमिलनाडु के दक्षिण आर्काट जिले के तिरुकोविलूर नामक प्रदेश के एक छोटे राज्य के नरेश मेईपुरुल नायनार थे। अब नायनार का मतलब संत भी है। उनका जन्म मलाडर जनजाति में हुआ था। वे एक न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। शिव स्तुति को भक्तिपूर्वक संगीत और नृत्य सहित प्रस्तुत करने की व्यवस्था में उनकी विशेष अभिरुचि थी। शिव के परम भक्त मेईपुरुल के हृदय में यह भावना दृढ़भूत हो गई थी कि शिव भक्त को का वेश धारण करने वाला साक्षात परमेश्वर के समान पूजनीय है। वे किसी भी शिव भक्त जो भी शिव की वेश या फिर उनकी शिव के जैसे सजा हुआ रहता था उनका वो सम्मान करते थे। वे शिव भक्तों की मनोकामनाओं को मुख के भाव से ही जानकर उन्हें पूर्ण करने में प्रयास करते। एक प्रतिद्वंदी नरेश मुक्तनादन ने उनसे युद्ध किया और बुरी तरह पराजित हो गया। शिव भक्तों के प्रति मेईपुरुल की निष्ठा और असीम श्रद्धा का को आधार बनाकर मुक्तनादन ने एक षड्यंत्र की योजना की। उनके इस अपूर्व गुण को मन में रखकर उसने मेईपुरुल की हत्या का निर्णय किया। चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले दीपक भी अंदर से काली होती है। यही स्थिति मुक्तनादन की थी। मन में हत्या का विचार और बाहर में शिव भक्त के चिन्ह धारण कर वह एक पवित्र ग्रंथ में खुफली छिपाए हुए मेईपुरुल के राजभवन में आ पहुंचा। उसके शिव भक्त तपस्वी की वेशभूषा और चिन्हों को देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें महल में जाने का अनुमति दे दिया। जब वह मेईपुरुल के शयन कक्ष तक पहुंच गया तो अज्ञात आशंका से युक्त प्रहरी जिनका नाम दंतन था उन्होंने उन्हें उस मुक्तनादन को रोक दिया और कहा, नरेश विश्राम कर रहे हैं। तापस वेशधारी प्रवंचक ने प्रबल क्रोध से कहा, हम राजा को परमार्थ तत्व का ज्ञान देने आए हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो? ये कहते कहते तपस्वी वेश में मुक्तनादन राजा ने शयन घर में पहुंच गया। राजा मेईपुरुल उस समय सो रहे थे। उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें जगाया। राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। पूछने पर तपस्वी ने बताया कि वह एक दुर्लभ आगम ग्रंथ लाया है और रानी के कक्ष से बाहर जाने पर ही उस ग्रंथ की आध्यात्मिक ज्ञान एकांत में राजा को प्रदान करेंगे। मेईपुरुल राजा की रानी अंतपुर में चली गई। तपस्वी को ऊंचा आसन प्रदान कर मेईपुरुल एक जिज्ञास शिष्य की भांति उनके समक्ष शांत भाव से बैठे रहे। उनका शीश झुका हुआ था। इसी क्षण शत्रु राजा मुक्तनादन ने राजा की पीठ पर खुखरी यानी कि कटार से आघात किया। शिवभक्त रूप में अपने हत्यारे को समक्ष में पाकर मेईपुरुल शीश झुकाए बैठे ही रहे। तभी उनका प्रहरी दंतन कक्ष में आया और कपी तपस्वी को मारने के लिए खड्ग उठा लिया। रत्न लथपथ राजा मेईपुरुल ने आज्ञा दी, तत् ये हमारे अपने हैं। इनके शरीर पर शिव की वेशभूषा है, इसलिए ये शिव भक्त ही हुए। इन्हें नगर सीमा तक सुरक्षित छोड़ाओ। तदुपरांत राज्य के अन्य अधिकारियों को राजा ने समझाया, विभूत ईश्वरीय है, उसका सम्मान ही उदार का मूल मंत्र है। विभूति ईश्वरीय है, उसका सम्मान ही उदार का मूल मंत्र है। ऐसा कहते कहते राजा मेईपुरुल शिव के चरणों में चले गए। यह आश्चर्य की बात नहीं कि शत्रु के आघात से षड्यंत्र पूर्वक मारे गए मेघुरण नायनार को का गुणगान करते हुए सुंदरमूर्ति नायनार ने कहा। सुंदरमूर्ति नायनार जो कि बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा, विजयश्री से सुशोभित महाबली मेघुरण का मैं दास हूँ, जो मारे गए वे कैसे विजेता हो, ऐसा हम सोच सकते हैं। प्राचीन काल से ही तमिल प्रांत में मृत्यु को पराजय नहीं माना जाता है। किसी महान लक्ष्य के लिए जब प्राण उत्सर्ग करने की घड़ी आती है, उस समय अभय मृत्यु का वर्ण करने वाले सच्चे अर्थों में प्रभु का दास है। अपने सिद्धांत को जीवित रखने के लिए स्वयं के जीवन का परित्याग करने वाले ही विजेता हुए। तो इस निश्वर शरीर को प्रभु के भक्तों और प्रभु की भक्ति के लिए अर्पण कर दें, वे सच में विजेता हुए, वे सच में विजयश्री हुए। यह विचार करने की बात है कि मेघुरण राजा ने अपने सेवक को आज्ञा दी, शत्रु राजा को निरापद ले जाओ और सुरक्षित छोड़ाओ। शिवभक्त के वेश के लिए प्राण सहित सर्वस्व न्यौछावर करना ही उनका आदर्श था। शिव चिन्हधारी सच्चा है या झूठा, प्रभु का दास है या अथवा नहीं, उनके लिए यह विचार निरर्थक था। वे अपने सिद्धांत पर अटल रहे। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
4: ஓம் த்யாயே நித்யம் மஹேசம் ரஜத கிரி நிபம் சாரு சந்திராவதன்சம் ரத்னா கல்போஜ்வலாங்கம் பரசு மிருகவரா வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதம் அமரகணர் வியாக்ரக்ருத்யம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்யசிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திககார மன்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி. விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நமஹ சோமார்த்த தாரிணே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.

आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी, इसका प्रसंग चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दैया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत ये कार्यक्रम 16 तारीख से 29 तारीख तक सायं 5:30 से 7 बजे तक का इस कार्यक्रम के आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी की 71वां श्लोक। आरूढ़ भक्त

केदारमा कलित मुक्ति महौषधीनाम पादारविन्द भजनम परमेश्वरस्य आशापाशक्ति

0: आशाशाटी कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु। तो कल के प्रसंग में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से रखते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका हूं, इसीलिए अपने व्यक्तियों के दोष और गुण को विचार नहीं किया जा सकता। आपके होने के कारण मुझ में कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब तक परमात्मा का नहीं होता तब तक मनुष्यों में हजार हजार दोष रहते हैं, और जिस समय मनुष्य परमात्मा का हो जाता है, एक ही गुण ऐसा है कि परमात्मा के होते ही सभी दोष हट जाते हैं और व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। एक नीति वाक्य है, सर्वे पदा अस्ति पदे निमग्नः। हाथी का जो पांव होता है बहुत बड़ा होता है, हाथी के अलावा सभी जीवों का पांव साइज में छोटा ही रहता है। हाथी जिस जगह पर वह अपने पांव रख लेता है और जितनी जगह वह पांव से घेर लेता है, उसके पांव के अंदर सभी जीवों के पांव आ जाते हैं। लेकिन चींटी जिस जगह पर अपने पांव रखती है उतने पांव में हाथी का पांव समाएगा नहीं। इसी तरह जीवन में भगवान का भक्त होना, इससे बढ़कर और कोई गुण है ही नहीं। जब इंसान भगवान का परम भक्त हो जाता है, उसके जीवन के सारे दोष हट जाते हैं। यदि कदाचित कोई दोष रह भी जाते हैं तो भी वो दोष भगवान के उपयोगी ही होते हैं। देख लो, भगवान के भक्त में यूं तो कोई दोष नहीं रहते, यदि कोई दोष रह भी जाते हैं तो वो दोष के बावजूद भी वो व्यक्ति भगवान का जो भक्त हो जाता है वह भगवान के उपयोगी ही होते, क्योंकि परमात्मा को सभी चाहिए। इस संसार में परमात्मा को सभी प्रकार के व्यक्ति चाहिए, और शायद इसी दृष्टि से परमात्मा ने ये हर प्रकार के व्यक्ति का निर्माण किया है। संसार के सभी जीव परमात्मा की दृष्टि में सब उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। ये तो हम ये परिभाषा करते हैं कि ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। जिसको अनुपयोगी समझते हैं उसका परित्याग कर देते हैं सर्वथा। इसीलिए नीतिकार ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। इस संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। बड़ा सा बड़ा चोर व्यक्ति भी काम लायक है संसार में, समझे कि नहीं। यदि चोर व्यक्ति परमात्मा के अयोग्य होता, अनुपयुक्त होता, खुद मक्खन और कपड़े चोरी करने के लिए प्रवृत्त न होते, हुए कि नहीं बोलो। इसका मतलब चोरी करना भगवान के लिए उपयोगी है। और यदि भक्त चोरी करता है तो भगवान के लिए अनुपयोगी नहीं है, भक्त चोरी करता है, ध्यान देना। इसलिए उसके चोरी करना भी भगवान के उपयोगी है। तुम यदि कहोगे नहीं महाराज मैं तो संसार में सबसे बड़ा चोर हूं, चोर का सरदार हूं, ईमानदारी से भगवान से कहोगे तो तुम्हारा हमें आवश्यकता है, तुम हमारे पलटन में भर्ती हो जाओ, तो हमारी आवश्यकता है तुम्हारी, हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता था चोरी करने, अब तुम चले जाना मेरे तरफ से, और क्या वो काम तुम कर लिया करो। महाराज तुम्हारे तरफ से क्या क्या काम करना है, हैं? चोरी करना है भाई, क्योंकि तुमको चोरी करने की आदत है, हम तुम्हें चोरी करने का काम देंगे। महाराज क्या चोरी करना है? महाराज हम यहीं बैठे रहेंगे गोलोक में, कैलाश में, साकेत में यहीं बैठे रहेंगे, तुम हमारे तरफ से जाना भक्तों के दिल को चुरा के ले आना। चोरी करने की आदत है ना तुम्हें, ले आना भक्तों का दिल जो है वो चुरा के ले आना यहां। और जब तुम उसके दिल को चुरा कर लाओगे तो वो अपना दिल खोजता हुआ भटकेगा इधर उधर, कहां गया मेरा दिल, कहां गया मेरा दिल। तो उसको जब पता चलेगा कि उसका दिल परमात्मा के यहां है तो अपने दिल लेने के लिए आएगा कि नहीं, यहां आएगा कि नहीं वो। तो तुम यदि चोरी करना तुम्हारी आदत है तो कोई नहीं, हम तुमको भी काम देंगे, आओ हमारे यहां आओ, है? लेकिन ये नहीं समझना कि चोरी अच्छी चीज है तो हमसे दूर होकर संसार और संसारियों के वस्तु को चोरोगे, चोरी करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। इस श्लोक का अभिप्राय कल भी हमने इस पर काफी चर्चा की थी। हर काम है परमात्मा में, इसलिए वह सिर्फ तुम परमात्मा के हो जाओ तब तुम्हारे जीवन के सारे दोष भी परमात्मा के उपयुक्त हो जाएंगे, और उस दोष के चलते परमात्मा तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। सामान्यतः तो दोष के चलते सभी तिरस्कार करते हैं, लेकिन परमात्मा के होने के बाद यदि तुम्हारे में वो दोष हैं तो भी तिरस्कार नहीं करेंगे, प्रयोग में ले लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। तो ये श्लोक शंकराचार्य जी ने इन भावों से कहा, जड़ता, पशुता, कलंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला श्लोक है ये, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। जड़ता, पशुता, कलंकिता, कुटिल चरत्वम नास्ति मई देव। तुम्हारा होने के कारण मुझ में ये दुर्गुण नहीं है, और कदाचित यदि अस्ति राजमौले, हे राजमौले, यदि ये दुर्गुण मेरे में है भी, जड़ता है, कलंकिता है, पशुता है, कुटिल चरत्व है भी, तो मैं तुम्हारे काम में तो आऊंगा आऊंगा। जड़ता है तो माला बनाकर पहन लो, है ना? पशुता है तो सवारी चढ़ लो, तुम्हें पशु ही चाहिए ना सवारी के लिए, तो नंदी चाहिए ना, पशु है कि नहीं नंदी, कलंकिता, यदि मेरे जीवन में कोई कलंकिता है तो सिर में लगा लो, तुम्हें कलंकी चाहिए सिर में लगाने के लिए। चंद्रमा कलंकी है इसलिए फिर भी सिर में लगा लिया, तो हमें सिर में नहीं लगाओ, तो नाक में लगाओ, कान में लगाओ, कहीं तो लगाओ, फिर भी तुम्हारे शोभा के पात्र ही बनूंगा मैं, विभूषण ही बनूंगा। कुटिलचारत्व तो तुम्हारे गले का आभूषण बन जाऊंगा, आदि आदि। अब उसी बात को यहां भक्ति सहित ध्यान का महत्व है। पहले किन श्लोकों से सिर्फ भक्ति की बात करते थे, अब भक्ति सहित ध्यान का क्या महत्व है। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम युक्तेर शिव स्मरण बाण गणेर रमोघई निर्जित्य किल विसरिपुन विजयी सुधींद्र सानंद महावहति सुस्थिर राजलक्ष्मी। ये श्लोक एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रूपक ये है, कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। राजा तभी बना जा सकता है जब वह पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रबलतम शत्रुओं को परास्त करता है, तब जाकर वह सुस्थिर राजलक्ष्मी, शत्रुओं को सर्वथा परास्त किए बिना उसकी राज्यलक्ष्मी सुस्थिर नहीं हो सकती। इसीलिए अपने भारत का इतिहास रहा है, राजा लोग जब भी विलासी हुए, भोग और विलास में लगे, तब शत्रुओं ने आक्रमण किया और देश पराधीन हुआ, परतंत्र हुआ, पराधीन हुआ। अब राजा लोग यदि सुदृढ़ होते, सजग होते, सावधान होते, तब 1100 वर्ष ही पराधीनता का अनुभव भारतीयों को करना न पड़ता।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: अब मेरी स्तुति करनी योग्य है, यथार्थ है। मेरी स्तुति का आप स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूं कि मेरी स्तुति कितनी भी करने पर आपके आपका जो स्वरूप है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो महिमा है, उसे पार नहीं कर सकती है। फिर भी ये मेरा नम्र प्रयत्न आप स्वीकार कर लीजिए। देखिए, हमें सबको मालूम है कि परमात्मा का महिमा परमात्मा तक पहुंचना कैसा है। दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, इसीलिए लिखा है। दुर्गम है, दुर्लभ है। और भगवत गीता और उपनिषद में ऐसा भी आप सुनते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई करोड़ में से, लाखों में से एक कोई उसको जानता है। जानने वाला लाखों में से एक किसी उसका श्रवण करता है। उसमें से कोई एक मनन, उसमें से कोई एक परमात्मा को प्राप्त करता है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि वो लाख में से जो एक है वो मैं कैसे हो सकता हूं। और ऐसा जान के परमात्मा की स्तुति ही नहीं करनी, उनको जानने का प्रयास ही छोड़ देना, ये गलत है। इसीलिए यहां जो गंधर्व राज ने कहा है, ऐसी ही वृत्ति हमें सबको बनानी है कि जैसे भी आपको आए परमात्मा का नाम लेना, समझ में आए या नहीं आए, जैसे भी कोई भी प्रकार से परमात्मा का अंतकरण पूर्वक आकलन करना ही इच्छनीय है, अपेक्षित है। तो इस प्रकार अब क्या आगे स्तुति कर रहे हैं वो हम देखेंगे। देखिए, जब हम जानेंगे ना कि पुष्पदंत जी ने क्या कहा है, तब पता चलेगा कि सर्व उपनिषद का सार है। यहां भगवत गीता और उपनिषद का सार संग्रह है ये पूरा महिमन स्तोत्र। और जिसे सार संग्रह का पता है, परमात्मा के सगुण और निर्गुण गुण से जो स्तुति की गई है, वो ऐसी श्रेष्ठ श्रुति स्तुति करने वाले भी कहते हैं कि मेरी स्तुति कम है, मेरा महिमा ज्यादा नहीं है। यानी क्या है कि पता है, अंदर से तो उन्हें पता है कि मैं जान रहा हूं, फिर भी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, कर्ता भाव नहीं है कि मैं कुछ जान गया हूं। हमेशा नम्र, आप जितना जानते जाएंगे ना उतना नम्र बनते जाना, उतना कहना कि मैं नहीं जानता हूं। आपको ना अच्छा लगे तो भी आप गलती से भी कह देना कि मैं नहीं जानता हूं। खुद को तो ऐसा कहते ही रहना, क्यों? अहंकार नहीं बढ़ेगा। कम ही रहना, छोटे ही रहना, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त को कभी छोटा रखता ही नहीं है। हाँ, वो तकलीफ उनकी है, आप छोटे बने रहिए। आप छोटे बनने पर भी, मिट्टी का इतना कण भी छोटा हो तो भी आपके जूते में लग के पर्वत तक पहुंच जा सकता है, वो पर्वत की टोच तक पहुंच सकता है। उसे किसी के जूते में रख के पर्वत तक पहुंचाना परमात्मा के हाथ का काम है। उसकी फिक्र हमें नहीं करनी है, हमें छोटा ही बने रहना है और उसके गुणगान स्तुति करनी। चाहे पता लग गया हो कि वो परमात्मा निर्गुण निराकार कैसा है, चाहे अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति ज्यादा से ज्यादा बन रही हो, चाहे निधिध्यासन आप करते हो, चाहे समाधि लगती हो, फिर भी अपनी उपाधि, अपना अहंकार छोटा ही रखिए। तो यहां कहते हैं अतीतव पंथनम, आपका जो महिमा है वो वाणी और मन का जो मार्ग है उसका उल्लंघन करता है। देखिए, अब ये कहां की बात कर दी कि मन और वाणी का उल्लंघन करता है, तो ये तो उपनिषद की बात कहने लगे। हाँ, अवांग अमनस अगोचरम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वो जो बात कही है, तो यहां तो उपनिषद आने लगे। देखिए, स्तुति मुझे स्तुति आती नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं कर सके तो मैं कौन सी चीज हूं, और दूसरे ही वाक्य में क्या बोल रहे हैं, उपनिषद की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। देखिए, इतना कम, और हम कितने उपनिषद जानते हैं, कितना कम जानते हैं। कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्माओं से, उनकी कृपा से हमने कुछ सुन भी लिया तो हम कहते हैं कि सब जान लिया है, ये कैसे हो सकता है। हाँ, देखिए, मन और वाणी का भी उल्लंघन कर रही है, यानी मैं जान रहा हूं कि मन और वाणी आप तक नहीं पहुंच सकती है, उतने तक मैं आपको जान गया हूं, कि आप कुछ ऐसे तत्व है जहां मन के विचार, मन के संकल्प विकल्प, यानी के देखिए मन नहीं पहुंच सकता है, यानी क्या कि परमात्मा ऐसा है या ऐसा है, उनके बारे में ऐसा है ऐसा कहा नहीं जाता, अवर्णनीय है परमात्मा, अवर्णनीय जो उनका विशेषण है वो बताने के लिए मन, क्योंकि मन का क्या काम क्या है, अंतःकरण जो दिया है उसमें मन की वृत्ति परमात्मा ने दी है, वो क्यों दी है, ये है कि नहीं है ये जानने के लिए। देखिए जब आप पुष्प को देखेंगे तब ये पुष्प है ऐसा नहीं है, पुष्प के अलावा जितनी भी चीज है ना पूरे जगत में वो सब ये पुष्प है कहने से नेगेट हो जाती है, अपने आप नेगेट हो जाती है। वो मन इतना जल्दी से, इतनी स्पीड से विचार कर रहा है कि इतनी सारी चीज नहीं है और ये पुष्प है। तो कुछ भी आप कहते हैं कि ये है तो उसके साथ ये क्या नहीं है वो उसके साथ लग ही जाता है। अब परमात्मा का अभाव, परमात्मा ये नहीं है ऐसा तो कोई भी क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। अगर आपने कहा कि ये परमात्मा है तो जरूर कुछ नहीं है वो भी उसके साथ लग ही जाएगा, और कुछ नहीं है ऐसा तो कुछ लग ही नहीं सकता परमात्मा के बारे में, क्योंकि सब कुछ ही वो है, इसलिए मन की जरूर नहीं पड़ती है। इसलिए मैं जानता हूं मन आपके तक नहीं पहुंच सकता, और जहां मन ही नहीं सोच सकता वहां वाणी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो वर्णन के योग्य ही नहीं है। वाणी को वर्णन करने के लिए नाम चाहिए, रूप चाहिए, आकार चाहिए, व्यक्त रूप चाहिए, ऐसा कुछ आप में नहीं है। जहां मन ही नहीं पहुंच सकता, सब कुछ आप है तो क्या कहेंगे। देखिए आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांच में से किसी को निर्देश करना है तो आप बता सकेंगे। पूरा आकाश प्लस वायु प्लस पृथ्वी प्लस अग्नि हाँ और जल, सब कुछ एक प्लस प्लस प्लस करके क्या जवाब आएगा भाई बताइए। तो ये पांच को एक कर दिया तो क्या जवाब आएगा हाँ शरीर नहीं, शरीर में मन बुद्धि कम है, मैं ये पांच को ही मिक्स करने को बोलती हूं हाँ। आप बोल सकेंगे नहीं, आप नहीं बोल सकेंगे। तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये परमात्मा, ये सब जुड़ के क्या आप बोलेंगे। कैन यू एक्सप्लेन, ये सब जुड़ने के बाद सबका जोड़ भी क्या परमात्मा है, तो बोले सबका जोड़ भी ये परमात्मा नहीं है, उनमें से ही उत्पन्न हुआ है तो भी वो नहीं है, इसीलिए वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती। अभी कहा कि मन और वाणी का विषय आपका नहीं है। देखिए मैं यहां तक पहुंच सकता हूं आपको जानने के लिए, तो फिर आपको कैसे जाना जाता है वो भी मैं जानता हूं। अब का जो वाक्य है, जो दूसरा पद है, वो हम सुनेंगे तो लगेगा ये पुष्पदंत जी कौन थे, ऐसे ही नहीं लिखा है। कहा अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि ही, श्रुति भी अभिधत्ते चकित हो जाती है, चकित होके विस्मय हो जाती है, विस्मित हो जाती है, श्रुति भी विस्मित होकर आपको अभेद भाव से ही वर्णनित करती है। श्रुति ने क्या कह दिया, देखिए पुष्पदंत जी ने, उपनिषदों ने इतना भी कहा कि अवांग अमनस अगोचरम, पर श्रुति उसके आगे जाके भी क्या कहती है पता है, कि मन और वाणी की बात नहीं, आपको प्रस्थापित करने के लिए हम अतद व्यावृत्ति की मदद लेते हैं, अतद व्यावृत्ति की सहाय लेते हैं। अब ये क्या बात हुई परमात्मा को जानने की, अतद याने क्या, तत् याने क्या हाँ, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम तत्त्वम असि, ये जो तत्पद जो है दैट, तत्पद परमात्मा का वाचक है, परमात्मा का निर्देशक है, नियरेस्ट निर्देशक है हाँ, जितना नजीक परमात्मा के जा सके उतना ये तत् जा सकता है मैक्सिमम, और इससे आगे बढ़ के मांडुक्य उपनिषद ने तो सब सीमाएं पार कर दी, उन्होंने चौथा ही कहा हाँ, तदेको अवशिष्ट है, ये तीन अवस्थाओं से पर जो चौथी अवस्था अनुभव होती है वो चौथा है, जो भी इसके बाद का है वो है। यानी श्रुति क्या करती है, श्रुति उपनिषद परमात्मा को वाणी से नहीं प्रदर्शित कर सकते वो पता है श्रुति को, मन से भी नहीं प्रदर्शित कर सकते वो भी पता है, इसीलिए अपने को बचाने के लिए सेफ साइड के लिए क्या करती है, खूब अल्प शब्दों में अक्षरों में बता देती है, खूब यानी जितना। देखिए आप किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, आपको भीतर से पता है कि मैं जो कुछ भी कहती हूं वो 100% सत्य नहीं है इस व्यक्ति के बारे में, मैं बोलती तो हूं पर सत्य नहीं है, ऐसा अगर आपको भीतर से तो पता ही है फिर भी आपको कहना है, अच्छा या बुरा कुछ भी बोलना तो है, तो आप जब बोलेंगे तब मन क्या काम करेगा आपके भीतर, मन मैक्सिमम फिल्टर रखेगा कि भाई आपको अगर पता नहीं है इस व्यक्ति के बारे में और आप पहले तो पता नहीं है तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये क्राइटेरिया हो गया, ये नियम हो गया। फिर भी कोई पूछता है कि नहीं भाई हमें इन व्यक्ति के साथ कुछ मेल करना है, ये कौन है आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे पता नहीं है, पूरा मुझे पता नहीं है इसीलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, तो बोले कुछ तो बताइए, अच्छाई और बुराई कुछ तो बताइए, तो आप क्या करेंगे, बताते हुए जितना कम बता सकेंगे उतना ही आप बताएंगे, क्योंकि गलत भी हो सकता है हाँ और सही भी हो सकता है। तो श्रुति ने क्या कहा कि पहले तो श्रुति मौन ही हो जाती है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, दक्षिणामूर्ति भगवान मौन ही हो गए, बोलना ठीक ही नहीं है। और फिर भी कोई कहता है, शिष्य आते हैं, नहीं कुछ बताइए ब्रह्म के बारे में, कुछ बताइए, आपके लिए घर छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, जानना है, संन्यास भी ले लिया है, अब थोड़ा तो बताइए वो परमात्मा के बारे में, तो बोले हाँ बता देते हैं, तो क्या बताएंगे, जो उपनिषद जो है, जो ऋषि जो है वो फिल्टर रख देते हैं, क्या फिल्टर रख देते हैं, कम से कम बताते हैं, यानी जो अगर उसमें कुछ गलती भी हो गई तो कम गलती होगी। तो श्रुति ने सेफ साइड ले ली कि भाई वाणी का विषय नहीं है तो भी मैं वाणी दे रही हूं अतद व्यावृत्ति, मैं वाणी दे रही हूं चौथा, मैं वाणी देती हूं चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, ये तुरीय परमात्मा है ऐसा हम बता के अभिधत्ते। फिर चकित हो जाती है श्रुति। श्रुति चकित क्यों हो जाती है, क्योंकि श्रुति कहती है कि मन और वाणी नहीं जा सकते तो भी वाणी कहां से आ गई, चकित हो गए, चकित इसलिए हो गए कि वाणी से बताने के बाद भी वो पूरा नहीं हो रहा है इसीलिए चकित हो गए, और चकित इसलिए हो गए कि मैंने किसी को सुनाया, उसने सुन भी लिया तो भी कुछ उसमें हुआ या नहीं हुआ, उसे पता लगा कि नहीं लगा, वो भी मुझे पता नहीं है, ये चकित ही हो गए आश्चर्य, और ये आश्चर्यमय परमात्मा है इसलिए चकित हो गए कि बताने के बाद मुझे जो हो रहा है वो ये परमात्मा है, बताना वाणी का विषय ये परमात्मा नहीं है। बहुत सारे कारणों से ये आश्चर्य आ गया, पर हमें ये सुखद आश्चर्य का अनुभव हमें भी करना है, पर कैसे करना है, तो श्रुति ने कहा एक ही रास्ता है अतद व्यावृत्ति का, व्यावृत्ति याने निरोध है, निषेध है। तो तद याने वो परमात्मा, और तद याने जो जो वो परमात्मा नहीं है, यानी कि अनात्मा है, जो नाम रूपात्मक है, जो मैनिफेस्टेड है, जो अतद है, जो व्याप्त है, जो जन्मा हुआ है, जो देश काल और वस्तु से सीमित है, वो अतद यानी परमात्मा कैसा है, सर्वदेशीय है। तो जो भी वस्तु नाम रूपात्मक एक देशीय है वो अतद हो गई, परमात्मा अजन्मा है तो जो भी जन्मा हुआ है वो अतद हो गया, परमात्मा अवर्णनीय है तो जो भी जिस भी कोई भी चीज का आप वर्णन कर सके वो अतद कोटि में आ गया, परमात्मा अनिर्देशनीय है, आप जिससे इदम करके जो भी निर्देश कर सके वो अतद में आ गया। आपको ख्याल आया अतद क्या है, ये शरीर है, हाँ ये शरीर है तो अतद हो गया, आप जानते हैं कि ये शरीर है, निर्देशनीय है, वर्णनीय है, वर्णन कर सकते हैं, तो ये अतद व्यावृत्ति। तो अतद की व्यावृत्ति से, तो भाई अतद की व्यावृत्ति करने के लिए हम तैयार है, कैसे करनी चाहिए, निषेध कैसे करना चाहिए, क्या ये शरीर मन बुद्धि का संघात है, क्या ये पूरा नाम रूपात्मक जगत है उसे नाश कर देना है, उसे खत्म कर देना है हकीकत में, फिर वो पता लगेगा, तो बोले व्यावृत्ति ऐसे नहीं होगी। तो क्या मन से मान ले उसकी माला जपे, तो बोले नहीं ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ तो सूक्ष्म बुद्धि की बात है, मन और बुद्धि को तो आप भूल ही जाइए, वो व्यवहार में थोड़ा काम करके बैठ जाएगी, ज्यादातर बिगाड़ेगी थोड़ा अच्छा करेगी, हाँ तो उसको तो भूल ही जाइए, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही, हाँ दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया। तो ये सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है? पर कल मैंने बताया वो बात को जरा ख्याल रखना कि ये जो सीमित शक्तियां लेके हम आए हैं, वो सीमित शक्तियों को इतना व्यय कर दिया है तो ये अतत भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए शक्ति को आप संचय कीजिए। देखिए, देखना बुरा नहीं है, पर ठीक ठीक देखिए। जहां भी कुछ निषेध देखना दिखाई दे आप वहां से हट जाइए। निषेध प्रपंच जो सुनाई दे, प्रपंच मुख से भी बोलना नहीं है, और कोई मुख से प्रपंच कर रहा है तो किसी की निंदा कर रहा है तो सुनिए मत, किसी की ज्यादा स्तुति कर रहा है तो भी सुनिए मत। तो ये सब बातें हैं, ये तो चित्त शुद्धि की बातें हैं। ये साधन तो आपको निरंतर तैयार रखना है, ये साधन से ही आगे बढ़ सकेंगे। कभी एक बार विवेक किया और चूक गया वो नहीं चलेगा, साधन तो अभी भी आपको तैयार ही रखना है। हमारी ओर से हमें इतना ही करना है। तो अतद व्यावृत्ति शास्त्र ने कैसे बताई है? तो जहत और अजहत लक्षणा जो है, जहत अजहत लक्षणा, उसे भाग त्याग लक्षणा भी बोलते हैं। तो ये अतद व्यावृत्ति, अतद का निषेध कैसे करना है? तो बोले कि उसकी एक प्रक्रिया, लक्षणा यानी एक प्रक्रिया है। अमुक अमुक लक्षण, अमुक अमुक चिन्ह है, वो चिन्ह को कुछ करना है। तो बोले भाई क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो शब्द जो है संस्कृत के है, ये पारिभाषिक शब्द है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ नया है। अर्थ समझने के बाद यही चीज हमें सरल लगने लगेगी। देखिए, ये जो जहत अजहत से भी ज्यादा ये भाग त्याग जो है शब्द, वो ज्यादा समझ में आने वाला है। भाग याने कुछ है और त्याग याने कुछ त्यागना है। भाग का, कुछ भाग का त्याग, पर क्या त्याग करना और क्या ग्रहण करना वो हम उदाहरण से समझ सकेंगे। शास्त्र में उदाहरण दिया है, जहत लक्षणा याने जो भी अर्थ कहा गया है कोई वाक्य में, एनी वन सेंटेंस, वो वाक्य में उसका जो भी अर्थ है वो पूरे अर्थ को निकाल देना, फिर ही उसका अर्थ घटित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः याने गंगा के प्रवाह में वो गाय का नेसड़ा जो होता है, गोट होती है, गौ माता जहां हम रखते हैं उसे गोट कहते हैं, तो गोट। तो भाई गंगा के प्रवाह में गोट, ऐसा अगर हम बोले तो गंगा का प्रवाह कैसा है? आप दो मिनट के लिए भी, दो सेकंड के लिए भी खड़े नहीं रह सकते, इतना प्रवाह है। जटाटवी गलत ज्वलत, ओहो, इतना प्रवाह है। क्यों? जटा कटाह संभ्रम। ये जो परमात्मा की, शिव परमात्मा की जो जटा है, वो जटा कटाह इतनी बड़ी है कि वो कटाह में से जब घूम घूम के वो पानी गंगा जी का आता है तो इतना प्रचंड है उसका जो जोर है, जो शक्ति जो है, तो वहां से निकल के गंगा जी आए तो वो शक्ति साथ में ही लेके आते हैं। इसीलिए गंगा जी का प्रवाह उतना है, क्योंकि वो मोमेंटम कहां से मिला है? परमात्मा की, शिव की जटा से वो मोमेंटम मिला है, वहां घुमड़ घुमड़ के आ रही है। तो ऐसा जो प्रवाह है उसमें हम दो मिनट के लिए भी ठहर नहीं सकते, तो गौ माता का गोट कैसे रहेगा? तो भाई समझना क्या है, गंगा जी का प्रवाह पूरा अर्थ जो है वो निकाल डालिए गंगा के तीर पे, गंगा के किनारे जो है गोट, वहां गौ माता है, वहां जाके आप उसकी सेवा कीजिए, ऐसा कहना है गंगायाम गोट। तो ये जहत लक्षणा। अच्छा, अजहत लक्षणा, अजहत लक्षणा याने अजहत, जहत याने प्रजहाति। देखिए भगवद गीता में क्या आता है, प्रजहाति यदा कामान, जहाति याने क्या, निकाल डालना, इतना आप समझ गए ना। तो अजहत लक्षणा याने कुछ निकालना नहीं है, याने वाक्य में से अर्थ निकालना नहीं है और बाहर से अर्थ लेना है। क्या लेना है? तो शास्त्र में उदाहरण है कि सफेद दौड़ रहा है। सफेद दौड़ रहा है याने क्या, कोई मनुष्य के बारे में तो ये हो ही नहीं सकता सफेद दौड़ रहा है, गौ माता भी नहीं हो सकती क्योंकि दौड़ रही है ऐसा कहना पड़ता। सफेद दौड़ रहा है याने भाई घोड़ा दौड़ रहा है, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहां सफेद दौड़ रहा है वो ऐसा का ऐसा ही रखा, और जहत कुछ भी जो शब्दार्थ है वो निकाला नहीं हमने, और ऊपर से हमने क्या किया, ऊपर से जो अर्थ है वो अंदर हमने रखा, बाहर से रखा अर्थ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अच्छा, तो ये जहत लक्षणा अजहत लक्षणा अभी शास्त्र और ब्रह्म को यहां कैसे फिट करेंगे, हम कैसे रखेंगे? तो बोले कि अगर जहत लक्षणा ये परमात्मा तत्व में, शास्त्र कहता है कि ये परब्रह्म कैसा है, तो बोले तत्त्वमसि, वो परमात्मा मैं हूं, तो मैं ये परमात्मा हूं, ऐसा अगर गुरु बोलेंगे तत्त्वमसि, तो हमारी अनुभूति क्या होगी, अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं कहती हूं कि अहम ब्रह्मास्मि और यहां जहत लक्षणा अगर मैं लगाऊं मेरे ऊपर, तो अहम ब्रह्मास्मि तत्व जो है वो मुझे कहा गया बोध, जहत में क्या होता है, अर्थ निकाल डालते हैं और फिर अर्थ होता है, गंगा का प्रवाह निकाल दिया और अर्थ हुआ, यहां मैं ब्रह्म हूं उसमें से मैं निकाल दूं तो अनुभव कौन करेगा, और ब्रह्म को निकाल दूं तो भी क्या होगा, तो जहत लक्षणा लग नहीं सकती है। अजहत लक्षणा यानी तत्त्वम असि, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ही मैं मान लेने को तैयार हूं, अजहत लक्षणा, कुछ निकालना नहीं है, पर मैं जीव भी हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि का संगात हूं, ऐसा जो विचार आ रहा है, और परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदेशीय है, और मेरे ये शरीर मन बुद्धि की उपाधि कैसी है, एकदेशीय है, एककालीन है, देश और काल से बद्ध है, और मैं कैसा हूं, तो मैं अल्प शक्तिमान हूं, ये जीव जो है ये शरीर मन बुद्धि से कार्य अल्प ही हो सकते हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, यानी अजहत लक्षणा लग के, यानी ऐसा का ऐसा ही मैं रहूं और मैं ब्रह्म हूं ऐसा मैं नहीं कह सकती, और मुझमें से ये तत्पद या अहम पद निकाल दूं तो भी ब्रह्म प्रस्थापित नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है, तो शास्त्र ने कहा अतद व्यावृत्ति, यानी जहत अजहत दोनों लक्षणा लगाइए आपके भीतर। दोनों लक्षणा कैसे लगाने की, तो बोले कि जहत लक्षणा से क्या करना है, भाई जहत लक्षणा से जो ब्रह्म और जीव में हम जो जीव है, मैं जो कहती हूं कि मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं ये उपाधि वाली, मैं ये जानने वाली, मैं सोचने वाली, तो ये मैं करके जो जीव अल्पज्ञ अपनी जितनी उपाधियों को घेर के बैठा है, तो जीव की उपाधि, मेरी उपाधि क्या है, भाई मेरी उपाधि अविद्या है, अविद्या से मैं जानती नहीं हूं मेरे स्वभाव को, तो ये जीव की अविद्या की उपाधि है, तो क्या क्या है, ब्रह्म और जीव की जो विरोधाभासी जहत, कुछ तो निकाल देना है ना, तो ब्रह्म और जीव की जो विरोधाभास है, विरोधाभासी वृत्तियां है, वो जहत निकाल देनी है, तो यहां कौन सी कौन क्या क्या है वो हम देख लेंगे, तो जीव के पास अविद्या की उपाधि है, तो परमात्मा यहां ईश्वर है, देखिए ईश्वर और ब्रह्म में क्या फर्क है देख लीजिए, ये दो नहीं है, जगत कारणम ब्रह्म इति ईश्वरः, ये ब्रह्म ही जब जगत का उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बनता है, तब खाली नाम बदल जाता है, इंडिकेशन बदल जाता है, वो ईश्वर एक ही है, तो ये ईश्वर कौन सी उपाधि से जगत उत्पत्ति स्थिति और लय कर रहा है, तो बोले माया कार्यत्वात्, माया से परमात्मा पोते खुद तो अकर्ता है, परमात्मा अपनी शक्ति से, अचिंत्य माया शक्ति से ये पूरे जगत को उत्पन्न करते हैं, स्थिति करते हैं और लय करते हैं, तो ये परमात्मा के पास क्या है उपाधि, उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो बोले माया, तो माया शक्ति है, यहां अविद्या शक्ति है, जीव कैसा है, जीव अल्पज्ञ है, कम जानने वाला है, परमात्मा सर्वज्ञ है, यो वेद निहितम गुहायाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सबके अंदर है, सर्वांतर्यामी है, कैसे मुझे पता लगे, मैं क्यों मान लूं कि परमात्मा सर्वांतर्यामी है, इसीलिए कि कर्म का फल देने वाला वो परमात्मा है, आप नहीं, इसके नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है उसे पता है और वो कर भी रहा है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इसलिए अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है और सबका कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता है, इसलिए सर्वशक्तिमान है, हम अपने भी कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता नहीं बन सकते, सबकी तो क्या बात है, और इतना सोचने के बाद भी सोच लेना कि आप किसी के साथ अगर मन अहंकार करके देखो मैंने इसको बता दिया ना, मैंने इसको बराबर फल दिया, इसने मेरा इतना बुरा किया था मैंने इसको बता दिया, आप कैसे बता सकते हैं, और आपका बताया हुआ उस तक पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना, बीच में इतना बड़ा ब्रह्म खड़ा है कैसे पहुंचेगा और कभी कभी क्या होता है देखिए, बद्दुआ से भी तर जाते हैं। किसी की बद्दुआ भी लग गई ना, किसी ने हमारे बारे में गलत भी सोचा तो उसका भी परमात्मा उपयोग कर लेते हैं। हाँ, और हमारे लिए दुआ ट्विस्ट करके दुआ हो जाती है, वो आपको पता ही नहीं लगता, ये सीक्रेट है, आज सुन लीजिए। तो अगर आपको किसी का अच्छा नहीं करना है, आपको मन में बहुत द्वेष है और किसी का अच्छा नहीं करना है, तो बद्दुआ अब से मत देना। क्यों भाई नहीं दे? क्योंकि वो बद्दुआ भी काम लग जाती है, परमात्मा का तो सब काम लग जाता है। हाँ, अघटित घटना पट्टी ऐसी माया, जो नहीं है वो करके दिखाना उसका काम है। तो अब बद्दुआ नहीं देना भाई, क्योंकि वो भी काम लग, आपके दुश्मन को काम लग जाने वाली है। इतना स्वार्थी बन के भी किसी को कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, वो काम लगने वाला है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो विरोधाभास अभी कहाँ दिखने लगा, तो बोले अल्पज्ञता और सर्वज्ञता में विरोधाभास है, दोनों निकाल दीजिए। फिर जीव के बारे में हमने दूसरा क्या, शक्तिमत्वता। हाँ, तो ये अल्पशक्तिमान है, ये सर्वशक्तिमान है, वो निकाल लीजिए। ये कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता सर्वशक्तिमान है। और ये जीव की उपाधि क्या है, तो बोले अविद्या उपाधि, तो ये अविद्या जीव में से निकाल दीजिए। और यहां परमात्मा की माया निकाल दीजिए, तो क्या बच जाता है, क्या रह जाता है? तो यहां जीव यानी क्या, अविद्या का अनुभव कौन कर रहा है? मैं बोलती हूं ना कि मैं जानती हूं या मैं नहीं जानती हूं, तो ये यहां कौन बच गया ये निकालने के बाद? मैं के साथ जो था अविद्या निकल गई, मैं के साथ अल्पशक्तिमत्व निकल गया, अल्पज्ञत्व निकल गया, तो रह क्या गया? अनुभव करता मैं, शुद्ध अहम बच गया है। और यहां यहां है जो परब्रह्म है, परब्रह्म को ब्रह्म जो बच गया, क्योंकि सर्वज्ञता निकाल दी, सब उपाधियां निकाल दी, तो बच क्या गया? ये ब्रह्म तत्व जो बच गया, उसे क्या कहा है शास्त्र ने, क्या कहा है? तत्त्वमसि, यानी निर्देश किसको है? तत् का निर्देश किसको है? त्वम का निर्देश किसको है? अहम प्रत्यय को कहा गया है कि वो ये ब्रह्म है। तो ये अहम प्रत्यय क्या हो गया? ब्रह्म दो हो सकते हैं क्या? ये आपका अहम ऐसा ऐसा और ये ब्रह्म अंदर आके मिल गया? नहीं, ये दोनों मिरर इमेज है, दोनों एक ही है। वो आपको समझ में आता है, यत साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एव अद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्ति। ये गुरुजनों को, इसीलिए गुरुजनों को परमात्मा तक कहा जाता है, परमात्मा ही समझा जाता है। वो इसीलिए कि वो पदार्थ जो है उसे वो एक करके देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये कोई फुसलाने की बात नहीं है, ये कहा गया है, समझ में आया? तो ये जो उपाधियां, ये जहत सब उपाय, विरोधाभास का जहत हो गया। अजहत यानी क्या, ऐसा का ऐसा ही रखना है? तो बोले अहम प्रत्यय और ब्रह्म प्रत्यय ऐसा का ऐसा ही रखना है। तो ऐड क्या करना है? वहां जो घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा शब्द हमने ऐड किया, तो यहां कौन सा पद ऐड करना है? असी पद, असी पद यानी इक्वल टू, वो ऐड करना है। दिस अहम इज ब्रह्म, दिस इज टू बी एडेड इन दिस अजहत लक्षणा। तो ये अतद व्यावृति, देखिए पुष्पदंत जी सिर्फ स्तुति कर रहे हैं और वो भी कम लगती है उन्हें कि मैं कम कर रहा हूँ, और इतनी ही कम हुई है स्तुति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 3. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Anandanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakshantava Salimi Matao, Isne Vaiveno Aap Sarubandhu. To Taittiriya Upanishad ko lekar ke शांति पाठ रूप मंगलाचरण को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें यह संकेत किया गया सन्नो मित्र शंभरुण सन्नो भवत्तर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ये जो प्रार्थना शांति पाठ मंत्र है, इसके अंतर्गत ऋषि जो है प्रार्थना करता हुआ संकेत करता है अपने कल्याण के लिए, और उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए बल को वांछित अर्थात इच्छित होते हुए वह इस प्रार्थना करते हुए संकेत कर रहा है कि हे मित्र, आप जो है हमारा कल्याण करें या हमारे दुर्तों का शमन करें। तो ये संकेत किया जिस पे चर्चा की गई, ऐसे ही वरुण शब्द को लेकर के संकेत किया और आगे संकेत कर रहे हैं सन्नो भवत्वर्यमा। अर्यमा शब्द का प्रयोग किया तो इंद्रिय विशेष के देवताओं के रूप में भी इन्हें ग्रहण किया जाता, वो भी इनके अर्थ हैं। यहां अर्यमा शब्द का क्या अर्थ है तो दो शब्द हैं, अर्य आगे है मां। अर्य शब्द का अर्थ क्या है तो शास्त्र की दृष्टि से री गतौ धातु से अर्य शब्द बनता है, अर्थात ज्ञानार्थक धातु से अर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत या सुशिक्षित या ज्ञान या श्रेष्ठ, ये उसके अर्थ है अर्य शब्द के। इसी अर्य शब्द से आर्य शब्द बनता है, माने वह अर्य का भाव जिसमें रहे उसे कहते हैं आर्य, माने जो सुसंस्कृत है, जो ज्ञानवान है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम गुणों से जो युक्त है, उसे ही आर्य शब्द से भी कहा जाता है। तो अर्य शब्द का अर्थ हुआ यहां माने श्रेष्ठ या ज्ञान, सुसंस्कृत सुशिक्षित, ये सारे के सारे उसके अर्थ हैं। आगे मां शब्द है, मां शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार मां कहीं निषेधार्थक संस्कृत में भी प्रयोग होता, निषेध के अर्थ में भी प्रयोग होता, और कहीं महाशब्द मां अपने को लेकर के भी कह दिया जाता। तो इस प्रकार से उसके अर्थ हैं, लेकिन यहां मां शब्द का अर्थ है मापना, और माप किससे होता है, तो होता है मन से। इसलिए मां शब्द का अर्थ है यहां पर मां, मन। तो क्या हुआ, अर्य मन। तो अर्यमा शब्द उसी से बनाया। तो अब जो है इसका अर्थ हुआ मने सुसंस्कृत मन या श्रेष्ठ मन अथवा उन्नत मन, प्रागतिक मन, ये सब उसके अर्थ। तो ऐसा जो इन गुणों से विशिष्ट, जो देव विशेष, उस देव विशेष से ही ऋषि प्रार्थना करता है कि आप हमको भी वह प्रगति, वह उन्नति, वह श्रेष्ठता, वह ज्ञान प्रदान करें। क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो इन गुणों से जो संपन्न देव है, ऐसे उस देव से वह ऋषि प्रार्थना करता है। तो यहां पर अर्यमन शब्द का या अर्यमा शब्द का अर्थ हो गया जहां पर एक सरलता है और जहां पर कुटिलता नहीं है, जहां पर श्रेष्ठता है, कनिष्ठता का जहां पर रूप नहीं है। तो कनिष्ठता श्रेष्ठता का विचार जहां है, सरलता और कुटिलता का निश्चय जहां पर है, प्रागतिक या उन्नति, प्रगति और अवनति का निर्णय जहां पर है, ऐसे निर्णय से संपन्न उस देव के लिए संकेत किया कि आप जो है वह शक्ति हमें भी दें जिससे हम एक न्याय को ग्रहण कर सकें, उन्नति को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो है ऋषि संकेत करता है कि शन्नो भवत अर्यमा, हे अर्यमा शन्नो भवतु, नह मेरे लिए आप जो है समनकारी हो, अर्थात मेरे अंदर जो कुटिलता है, मेरे अंदर जो अवनति है और मेरे अंदर जो कनिष्ठता है, संकीर्णता है, उसका आप निवर्तन करें, उसका आप समन करें, और इनका समन हो जाएगा तो कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यहां पर संकेत किया गया

कि बुद्धि को व्यवसायात्मिका बनाने के लिए, बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाने के लिए, बुद्धि को परनिष्ठित बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन की प्रसन्नता। प्रसन्न चेतसो ह्यासुर बुद्धिर परिवतिष्ठते। जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाती। अब प्रश्न हुआ कि मन की प्रसन्नता क्या? हमने जो कामना की, कामना के अनुसार प्रयत्न किया और प्रयत्न के अनुसार हमें फल मिल गया तो मन प्रसन्न हो गया। कहा ये प्रसन्नता नहीं। तब मन की प्रसन्नता क्या? तब वहां संकेत किया कि मन की प्रसन्नता जो है, जैसे साहित्य के अंतर्गत प्रयोग आता है, अद्य प्रसन्न गंभीरम सरह, आज सरोवर बड़ा प्रसन्न है और गंभीर है। अब सरोवर की गंभीरता क्या है, सरोवर की प्रसन्नता क्या है? तो सरोवर की गंभीरता क्या होगी कि उसमें कोई तरंग नहीं उठ रही, उसमें कोई लहर नहीं उठ रही। ये सरोवर की गंभीरता होगी, ये स्थिरता होगी, उसका जल शांत है, स्थिर है। और उसकी प्रसन्नता क्या होगी? तो अब जब तरंग नहीं उठ रही है और तरंग न उठने से जल में कोई हलचल नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कंपन नहीं है, इसलिए वहां पर जो किनारों में धक्के लगने से जो मिट्टी उठ जाती है वो मिट्टी भी नहीं उठ रही, अर्थात उस मिट्टी से भी रहता है, मल से रहता है, उसका जल स्वच्छ है। तो जैसे उसकी स्वच्छता और स्थिरता, यही उसकी प्रसन्नता और गंभीरता है, वैसे ही मन रूपी सरोवर की, इसको भी हृदय कहते हो, इस हृदय रूपी सरोवर की प्रसन्नता क्या होगी, इसकी गंभीरता क्या होगी? तो यहां पर भी संकेत किया, तो इसकी थोड़ी विलक्षण प्रसन्नता बतला दी। ये नहीं कहा कि इसमें कोई विचार न उठे, तरंग न उठे, ये नहीं कहा। तरंग उठे, लेकिन वह तरंग भी कैसी हो, तो इसके लिए पहले विपरीत तरंगों का निराकरण किया। तो वहां भगवान ने कहा राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आपके जीवन में संकल्प हो, आपके जीवन में अभिकांक्षा हो, लेकिन वो अभिकांक्षा, वो संकल्प कैसा हो? तो संकेत कर दिया राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग और द्वेष से रहित। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र में, भारतीय जो वांग्मय परंपरा है उसमें जो दर्शन शास्त्र है उसमें दुख का हेतु बतलाते हुए एक श्रृंखला की चर्चा की। क्या कहा? कि जब जीवन में अज्ञान आता है, जीवन में भ्रम आता है, जीवन में भूल आती है, और जब भ्रम आता है, भूल आता है, अज्ञान आता है, तो उस भ्रम को लेकर के होने वाला जो अहम, भूल को लेकर के होने वाला जो अहम, और जब भूल से होने वाला जो अहम है, भ्रमित जो अहम है, वो अहम क्या करता है? तो मम को उदित कर देता है। अहम से मम भाव आ जाता है, और जहां पर अहम मम आया तो वहीं पर क्या आ जाता? का इच्छा पैदा हो जाती, कामनाएं हो जाती, और जहां कामना आ जाती है तो वहीं कामना आने पर ही राग और द्वेष भी आ जाते हैं। और जब राग और द्वेष आ जाते हैं तो राग द्वेष के आने पर संबंध बन जाते हैं, कहीं शत्रु का संबंध, कहीं मित्र का संबंध, तो संबंध बन जाते हैं। और वो संबंध कैसे हैं? तो अयोग्य संबंध, जो योग्य नहीं है, ऐसे अयोग्य संबंध बनते हैं। और जब अयोग्य संबंध बन जाते हैं तो वो अयोग्य संबंध ही हमारे लिए दुख के हेतु बन जाते, और वही अयोग्य संबंध हमारे जन्म और मरण के हेतु बन जाते। ये परंपरा है, इसलिए भगवान ने भी संकेत कर दिया राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय ईश्वर, राग द्वेष से रहित होकर के, और फिर मन संकल्प करे, और वो मन जो संकल्प करेगा तो जहां राग और द्वेष नहीं होगा,

उस मन में जो संकल्प होगा वो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और वो गंभीर होगा, उसमें एक स्थिरता होगी, स्थायित्व होगा। ऐसा संकल्प होगा, क्योंकि निर्मल जल में क्या होता, बिंब का है प्रतिबिंब, यह बिंब का रूप स्पष्ट दिखाई दे जा, तो उसका संकल्प होगा। तो इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं, तो ऐसा जो मन और ऐसे मन वाले से ही प्रार्थना करते, ऐसे मन का भी जो मूल देव है, ऐसे मन को धारण करने वाला है, ऐसे उस देव से प्रार्थना की कि आप जो है मेरा समन करें, अर्थात ही हमारे अंदर ये कुटिलता आदि जो है उसका निराकरण करें, हमारे अंदर जो अवनति कनिष्ठता संकीर्णता आदि है उसका निराकरण करें। और जब इस प्रकार से उनका निराकरण करेंगे तो हमारे अंतर्गत शुद्ध संकल्प वाला मन होगा, एक निर्णयात्मक न्यायात्मक मन होगा। जो मन संकल्प लेगा वो न्याय से युक्त होगा, जो मन संकल्प लेगा वो उन्नति देने वाला होगा, जो मन संकल्प लेगा वो ज्ञान देने वाला होगा। तो इस प्रकार का जब संकल्प आएगा तो उस संकल्प से बुद्धि सद असद का विवेक करने में समर्थ होगी। तो विवेक शालिनी बुद्धि प्राप्त होगी, और जब विवेक शालिनी बुद्धि प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी, निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी, और वो प्रगति हमारी लौकिक भी होगी और हमारी पारलौकिक भी प्रगति होगी। इसलिए यहां संकेत किया, सन्नो भवत् त्वर्यमा न अर्यमः न संभवतु। हे अर्यमन, हे अर्यमा, देव आप हमारे लिए क्या हो, कहा हमारे दुरित्वों को दूर करने वाले हो, हमारा समन करने वाले। समन किसका करना, दुरित्वों का, जो हमारे लिए अन्याय है, जो हमारे लिए अवनति को देने वाला, ऐसे गुण धर्मों को हमारे में से दूर कर दो। और उन गुण धर्मों को जब दूर कर दोगे तो वो गुण धर्म हमारे में फिर आ जाएंगे जिनके द्वारा हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी, और जब उन्नति प्रगति होगी तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो कल्याण स्वरूप हम हो जाएंगे। अब ये तो इसका भावार्थ है। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक उदाहरण सुना, क्योंकि गिरीश भाई कल कह रहे थोड़ा सरल, तो सरल जो है आख्यानों से उदाहरणों से ही होता है, क्योंकि नियम भी है। हमारे यहां शिक्षा के तीन रूप बतलाए, या जिसे उपदेश कहो, शिक्षा कहो, आगे शिक्षा की चर्चा भी आए, उसके तीन रूप हैं। एक तो प्रभु संबित शिक्षा होती है, एक मित्र संबित शिक्षा होती है, और एक कांता संबित शिक्षा होती। तीन प्रकार की शिक्षाओं की हमारे यहां परंपरा है। अब जो है प्रभु संबित शिक्षा क्या है, प्रभु संबित शिक्षा ये है, जैसे प्रभु माने स्वामी, प्रभु माने क्या है, स्वामी मालिक है, तो जैसे किसी फैक्ट्री के अंतर्गत और वहां पर जो कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों को आदेश देता है, कौन, फैक्ट्री का मालिक, और उनसे कहता है कि आपको है इस कच्चे माल को तैयार करना, दूसरे से कहता आपको इसे परिपक्व बनाना। अब जब ये कहता है तो क्या नौकर ये कहेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, या उसमें कोई संशोधन करेगा, परिवर्तन करेगा, यदि संशोधन परिवर्तन करेगा उसे नहीं करेगा तो वहां फैक्ट्री चलेगी नहीं, और फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मालिक उसे क्यों रखेगा, है ना। तो वहां पर नियम क्या है कि जैसा मालिक कह रहा है वैसा उस कर्मचारी को करना, उसमें उसे ऊहा पोह नहीं करनी, उसमें उसे नू नच नहीं करना, उसमें उसे संशोधन नहीं करना। इसे कहते हैं प्रभु संबित शिक्षा या प्रभु संबित उपदेश। यह कौन सा उपदेश है, कौन सी शिक्षा है, तो इसी को संकेत किया गया कि वेद से होने वाली जो शिक्षा है